सुप्रभात। एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर

0: पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार में सबसे पहले सुनिए चिंतन। आज का चिंतन, परिवर्तन शाश्वत सत्य है, इसलिए जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, तो स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक दिन बदलेगी जरूर। ये था आज का चिंतन। और लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। संगीत सरिता श्रृंखला जिसमें आप सुन रहे हैं ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। इसका भाग दो आज प्रसारित होगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम को आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन पाएंगे। सुबह 7 भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हिराही प्यार के। त्रिवेणी आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2। आलेख एवं स्वर विधि जैन का है, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आठ बजकर 30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा लेखक राजा मेहंदी अली खां पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 सेहत नामा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का भाग पहला। संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 सुरीला सफर आप सुनेंगे। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज 2:30 पर। कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत दोपहर 3 आप इन विषयों पर चर्चा सुनेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सखी विशेष में डॉक्टर गीता मंजुनाथ, निरामय हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक और CEO के बारे में हल्की फुल्की बातें। इसमें सुनेंगे आप भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई, मुहावरों की दुनिया। इसमें आप सुनेंगे पेट में चूहे दौड़ना, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश आनंद बख्शी से यूनुस खान की बातचीत का भाग दूसरा। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5 छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत नाटिका बस की सीट, लेखन VM आनंद, निर्देशन है सुशील बैनर्जी का। पर रात में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 आपके लिए। आज के फनकार रात 9:30 पर केंद्रित रहेगा अभिनेत्री कुमकुम पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और 11 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था आज का झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे अरण्य कांड का भाग 263।

छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती। सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्ववत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती है।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, आइए आज सुने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: पिछली बार हम राग यमन के बारे में बात किया था, अब आज हम राग छायानट के बारे में बात करेंगे। अभी छायानट राग बहुत सारे गाते हैं, तो उसमें कौन सी बात आना चाहिए ये बंदिश के माध्यम से ही आपको मैं समझाऊंगा। इसमें एक बंदिश है, तन्न मदन सबो मुन्न पर वारू, ये मैं बंदिश गाता हूँ।

मध्यम का कितना प्रोमिनेंस है ये आप सुनते होंगे, तो मध्यम बहुत ही प्रोमिनेंट है उसमें छायानट में। अभी दूसरी एक इस राग में पुरानी बंदिश, एक करत ओमो से नेहा की बात हो।

अब इस राग में जो मैंने नी नी जा ये जो आखिर में लिया है ना, ये बहुत सारी कम दिखाई देते हैं, सुनने में नहीं आता है, लेकिन ये बंदिश में इसका प्रयोग किया है। तो छायानट गाते वक्त इस प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है।

तो चाय नट में मध्यम का प्रयोग कैसा किया है ये बंदिश में बहुत ही ठीक तरह से दिखाया है। ऐसा मध्यम में मध्यम का प्रयोग ज़्यादा होना चाहिए। मैंने कहा था कि राग छायानट में मध्यम की कितना प्रोमिनेंस है। अभी ऐसी एक बंदिश मैं दूसरी सुनाता हूँ जो बहुत सारे लोग

का सम जो है मध्यम पे है और ऐसे कई बंदिश है जो पारंपरिक बंदिश कहते हैं हम। अभी इसमें एक परे संगति जो प्रोमिनेंट है इसके ऊपर मैंने भी एक बंदिश बनाई है जो आपको सुनाता हूँ।

0: ये जो बंदिश मैंने गाया माने ना जिया मोरा, ये मेरे गुरु के ऊपर किया है। मैं कहता हूँ कि आप तो छोड़ के गए, तो हम तो बेचैन हो गए। अभी हमारी जो ज्ञान की प्यास है वो कौन बुझाएगा, ये मेरा कहना है उस बंदिश में। अभी एक दूसरा बंदिश सुनाता हूँ जो ये मेरी है, एक ताल में बंधी हुई है।
1: बलमा तोरी प्रीत,
0: ये तो एक कॉमन सब्जेक्ट है।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। इसे प्रस्तुत किया जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास ने, इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम बालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: कार्यक्रम भूले बिस्तर गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तर गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि श्रोताओं, आज है पुण्यतिथि अभिनेत्री कुमकुम की, जिनका मूल नाम जेबुनिसा खान था। वे हिंदी सिनेमा और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। तो आज हम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीत में उन्हीं पर फिल्माए हुए गीत। आपको सुनवाने जा रहे हैं ये सबसे पहला गीत, गंगा मैया तो है पिहरी चढ़ाई बे। इस फिल्म से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत है, शैलेंद्र के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। तो हम बता दें आपको कि अभिनेत्री कुमकुम को फिल्मों में लाने का श्रेय फिल्मकार गुरुदत्त को जाता है। 1954 की फिल्म आर पार का वो गाना किसे याद नहीं होगा, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर। इस गाने में वो पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म उजाला का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत पर किया है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। केएल परदेसी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर, दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से।

0: कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। श्रोताओं, आज हम नमन कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम को और उन्हीं के बेहतरीन गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमकुम एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना भी थी। उनकी इस कला की झलक कोहिनूर फिल्म के गाने मधुबन में राधिका नाचेरे में देखने को मिलती है। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं लागी नहीं छूटे राम, इस फिल्म का गीत। सुमन कल्याणपुर ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

कल्पना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत मोहिनी फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज़ में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने एंड दत्ता ने संगीत दिया है।

अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है SN त्रिपाठी ने। कल यानी 29 जुलाई को लेखक राजा मेहंदी अली खान की पुण्यतिथि है। इनकी तो के माध्यम से हम उन्हें याद कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रम यानी हम हेराही प्यार के इस कार्यक्रम में भी हम उन्हीं के लिखे गीतों को आज आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आपको अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं।

0: मिस्टर एक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में तनवीर नकवी ने इस गीत को लिखा था और एन दत्ता का संगीत था। और आज हमने बात की अभिनेत्री कुमकुम की, क्योंकि आज थी उनकी पुण्यतिथि। कई सदाबहार गीतों को उन्होंने अपनी सजीव अदाकारी से अमर बना दिया। उन्हें हम स्नेहिल नमन करते हुए आज याद कर रहे थे। उन्हीं के मधुर गीत हमने आज आपको सुनवाए और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म।

श्रोताओं, विविध भारती से आप सुन रहे हैं अगला कार्यक्रम जो हम लेकर आ रहे हैं बस थोड़ी ही देर में, हम है राही प्यार के।

लीजिए श्रोताओं, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के लेकर आपके लिए। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। लीजिए, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लेखक राजा मेहंदी अली खान के द्वारा लिखे गए गीत, क्योंकि आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। कल 29 जुलाई को उनकी भी पुण्यतिथि है। तो राजा मेहंदी अली खान के बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत के महान कवि, लेखक और गीतकार थे। इन्होंने संगीतकार एसडी बर्मन के साथ गीतकार के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी 1947 की फिल्म दो भाई से। उनके लिखे गीत बेहद लोकप्रिय हुए। मेरा सुंदर सपना बीत गया, ये गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। कल 29 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम उन्हें याद करते हुए नमन करते हैं और उनके द्वारा अपने पीछे छोड़ा हुआ अविस्मरणीय गीतों का खजाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये पहला गीत एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत ओपी नैयर के संगीत से सजा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार की। रेशमी रुमाल इस फिल्म का गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया है बाबुल ने।

नीला आकाश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में। राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के में, अब वक्त है एक छोटी से अंतराल का।

इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत बद किया है मदन मोहन ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, राजा मेहंदी अली खान के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत, अली बाबा और 40 चोर फिल्म का नाम।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: कल्पना फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, राजा मेहंदी अली खान के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: हम आकाशवाणी की विविध भारती सेवा के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। NDA संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
6: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
5: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
7: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
5: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमन वेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

कुछ तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
5: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
6: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
7: 9772097720।
8: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
9: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
8: तुम्हें तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
9: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
10: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देखकर ही खरीदें।
11: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
12: जरूर सुनिए पिटारा, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
13: लीजिए हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। साथियों, स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। अपने शरीर को समय दें, मन को मुस्कान दें और जीवन को नई ऊर्जा दें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की पहचान बनती है। याद रखिए, स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का सुंदर तरीका है। संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक विचार हर दिन को बेहतर बनाते हैं। इसी प्रेरणा के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम चित्रलोक में। नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए आज के इस कार्यक्रम चित्रलोक की शुरुआत कर लेते हैं और कर लेते हैं थोड़ी एक्सरसाइज।
14: Touch yourself.

0: ਭੰਗੜਾ
1: Shaking your boat.

जुम्बा ये सॉन्ग सुन रहे थे आप गुड न्यूज फिल्म से। रोमी ने इस गीत को गाया था, वायु ने लिखा था और संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने। और अब आपको सुनवाने जा रहे हैं 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। हम आपको बता दें कि आज है 28 जुलाई और आज हम मना रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में वायरल हेपेटाइटिस के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें शिक्षित किया जा सके, जिससे लीवर में सूजन हो सकती है और जो लीवर से संबंधित गंभीर बीमारियों और लीवर कैंसर का कारण बन सकती है, इसके बारे में जानकारी हमें मिल सके और हम जागरूक नागरिक बने। अधिकांश तीव्र हेपेटाइटिस संक्रमण हल्के लक्षणों वाले होते हैं और कभी कभी इनका पता भी नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी यह गंभीर यकृत रोग का कारण भी बन सकता है और जानलेवा भी हो सकता है, जिसके लिए यकृत प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वैसे इस दिवस को मनाए जाने के पीछे जो इतिहास है, डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग, जिन्हें बेरी ब्लमबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, एक चिकित्सक और आनुवंशिकीविद थे। उन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और हेपेटाइटिस बी का पहला टीका विकसित किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी उपलब्धियों और योगदानों को याद करने के लिए 28 जुलाई उनके जन्मदिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में चुना गया। वैश्विक स्तर पर मुख्य लक्ष्य हेपेटाइटिस बी, सी और डी संक्रमणों को समाप्त करना है। यही है इस दिवस को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य। तीव्र वायरल हेपेटाइटिस के विपरीत ये तीनों संक्रमण दीर्घकालिक हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं जो कई वर्षों तक चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए WHO देशों से विशिष्ट लक्ष्य हासिल करने का आग्रह भी तो करता है। इस वर्ष 2026 में विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे विस्तार से समझें। यह दिवस हमें जागरूक कर रहा है तो हमें अपने आप को इस दिवस के लिए जागरूक बनाना ही होगा ताकि हम इस रोग से 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त विश्व की ओर बढ़ सकें।

0: संजू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। शेखर अस्तित्व ने इस गीत को लिखा था, विक्रम मोंत्रोस का संगीत था। और अब कार्यक्रम चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया
3: यार। सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और जयेश गानी की आवाज में ये गीत फिल्म मिलेंगे मिलेंगे से। समी ने इस गीत को लिखा है और संगीत बत किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज है अभिनेत्री आयशा जुल्का का जन्मदिन। हम उन्हें विविध भारती के परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां देते हैं। उनकी फिल्मों से संबंधित सारे गीत आज आप सुन पाएंगे शाम को कार्यक्रम तराने नए पुराने में। साथ ही आपको बता देते हैं कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा लेखक राजा मेहंदी अली खान पर, और रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री कुमकुम पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत हेलो ब्रदर फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: आपने सुना चित्रलोक कार्यक्रम, ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक हासिल किया। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3,85,00,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन खातों में 24,610 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है और जमा राशि के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में 2,19,00,000 से अधिक महिलाओं के जनधन खाते हैं, जो कुल खातों का 57% है। योजना के तहत 2,87,00,000 से अधिक रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। जनधन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लेम रिव्यू कमेटी अब संबंधित अस्पतालों में पहुंचकर मामलों की सुनवाई कर रही है, जिससे लंबित क्लेम का तेजी से निस्तारण हो रहा है। अब तक 98,000 से अधिक अपीलों में से लगभग 72% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही 19,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि इससे अस्पतालों को समय पर भुगतान मिलेगा और मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ सीजन 2026 के लिए 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। वहीं रबी 2026-27 सीजन के लिए ये आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। किसान किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर या CAC के माध्यम से ये बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल या अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है। खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, कपास और मूंगफली सहित 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल खराबे से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ और रबी दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
2: बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर के लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। कल जयपुर में शासन सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, संबंधित उद्योग संघों, CETP संचालन समितियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजुड़ी सहित अन्य नदियों में उद्योगों का प्रदूषित पानी नहीं जाने देने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। बैठक में CETP संयंत्रों के प्रभावी संचालन, रखरखाव और प्रदूषित पानी के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की नियमित निगरानी, समय पर जांच, परामर्श और उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अगले एक महीने में संभावित प्रसव वाली महिलाओं की समय रहते चिकित्सकीय जांच कराने के देश दिए। श्रीमती राठौर ने 104 एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता की रैंडम जांच कर फीडबैक लेने तथा कमियों का तत्काल समाधान करने को भी कहा। उन्होंने गंभीर एनीमिया और चांदीपुर वायरस की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। स्वायत्त शासन सचिव ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन 15 अगस्त से 28 सितंबर तक किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 के तहत की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। और अब मौसम। पूर्वी भारत के ऊपर बने नए तंत्र के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। आज भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में गरज के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज मेघ पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश बढ़ने और कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि

0: राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम।

0: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: हाँ जी, सुबह के 9:11 35 seconds ऑन द डॉट. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM. 28 जुलाई 2026 की तारीख है, दिन मंगलवार है और सब मंगल मंगल हो आपकी ज़िंदगी में, ऐसी मंगल कामना आपके लिए करती है अनामिका. शकील आज़मी साहब का एक शेर है, बड़ा कमाल का है, बहुत पसंद है मुझे और आपको भी आएगा, कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है. इसीलिए डिटर्मिनेशन लेकर चलिए, अगर टूट भी गया तो दोबारा कर लीजिए. हर दिन एक फ्रेश डिटर्मिनेशन या फिर ओल्ड डिटर्मिनेशन को ही रिवाइव कीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते रहिए, फिर देखिए लाइफ में 180 डिग्रीज का चेंज. इसी बात पे ट्यूसडे हाइलाइट्स आपको बता दूं, आज मोटिवेशनल बूस्ट में एक बेहतरीन और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से हम बातचीत करने वाले हैं. 10 AM ऑनवर्ड्स गुनगुनाते लम्हे होंगे आपकी चॉइस के गाने, आयशा जुल्का का बर्थडे है तो उनके गाने भी होंगे. देन 11 AM ऑनवर्ड्स ग्लोबल जर्नी में एक ऐसी सिटी की हम सैर करेंगे जो अपनी खूबसूरती, रॉनेस और हरियाली के लिए दुनिया भर में मशहूर है. सबसे पहले होगा मोटिवेशनल बूस्ट इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, सो स्टे ट्यून्ड टू रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.

0: और आइए अब सुनते हैं ट्यूसडे स्पेशल, हमारा खास शो मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल राजा पार्क जयपुर।
1: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्ही कदमों से माँ की गोद तक हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबीलोन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबीलोन हॉस्पिटल राजा पार्क जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
0: सुबह के 9:15 पूरे हो चुके हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर। वक्त है हमारे ट्यूसडे स्पेशल शो मोटिवेशनल बूस्ट का, पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल राजा पार्क जयपुर। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जी, टेक्नोलॉजी, मीडिया, पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में एक सम्मानित अनुभवी एवं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं आप। डॉक्टर खंडेलवाल के पास जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी और एकेडमिक्स में 25 वर्षों से अधिक का रिच एक्सपीरियंस है। तो अपने 25+ ईयर्स के लंबे एक्सपीरियंस में आशीष जी ने संचार और जनसंपर्क के फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और अपनी कार्यकुशलता और लीडरशिप से एक स्पेशल अपने लिए पहचान बनाई है। वर्तमान में आप राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इसके साथ ही आप टेक्नोलॉजी, डिजिटल कम्युनिकेशंस, मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस जैसे विषयों पर अपने गहन ज्ञान और अनुभव के लिए भी व्यापक रूप से जाने जाते हैं। डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है ऑन रेडियो पिंक सिटी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
0: कैसे हैं सब?
2: मैं अच्छा हूँ।
0: तो 25 साल से ज्यादा का आपका सफर है आशीष जी, पत्रकारिता, जनसंपर्क, सोशल मीडिया, शिक्षा। आप आज एक लोकप्रिय पीआर एंड कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल होने के साथ ही साथ डीआईपीआर में भी सेवाएं दे रहे हैं। जब पीछे मुड़ करके देखते हैं खुद को, तो किस तरह से याद करते हैं अपने शुरुआती दिनों को, अपने घर को, शहर को?
2: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उस भाग्यशाली पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी ने तकनीक का सबसे बड़ा बदलाव देखा है। 25 साल पहले की बात की जाए तो ना इंटरनेट था और ना हर हाथ में मौजूद रहने वाला ये मोबाइल फ़ोन। लैंडलाइन फ़ोन्स पे कुछ इक्का दुक्का जगह ही मिल पाते थे। तो उस दौर में अगर जिज्ञासा थी तो उस जिज्ञासा का शमन करने के लिए समय भी था। आज की तरह नहीं कि गूगल और एआई से पूछकर और 2 सेकंड में जिज्ञासा का शमन कर लिया। तो वो जो जिज्ञासा का शमन का जो समय मिलता था, वो समय इतना थॉट प्रोवोकिंग होता था, अपने विचारों को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला होता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब आज की तरह परीक्षा परिणाम 95% नहीं होते थे, 60% अंक पाना भी एक बड़ी चुनौती माना जाता था। उस दौर में आपसी मेलजोल, सभी से बातचीत, वार्तालाप और घनिष्ठता इस कदर थी जो आज सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा कहीं गुम सी गई है। तो इस दौर की इस जर्नी, आज का दौर भी अच्छा है लेकिन उस दौर से यदि तुलना की जाए तो ये जो व्यापक बदलाव आया है, इस बदलाव का साक्षी बनना सच में एक बड़ी किस्मत की बात है।
0: बिल्कुल, तो हमने तो वो लिटरली ट्रांजिशन देखा है। नॉन इंटरनेट जमाने से हम इंटरनेट के दौर में आए हैं और हमने ये पूरा बदलाव जो है व्यापक तौर पे देखा। आशीष जी, घर वालों के सपोर्ट को आप किस तरह से याद करते हैं? कुछ स्कूल कॉलेज के दिनों की कोई यादें हैं जो आप शेयर करना चाहें आज, क्योंकि इसके बाद हम गंभीर वार्तालाप करेंगे आपके साथ।
2: बिल्कुल, देखिए, घर वालों का सपोर्ट 2 तरह का होता है। वो पढ़ने के लिए और अपने करियर में राह बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। सभी के घर वाले इसी तरह करते हैं, बस उनका अंदाज अलग होता है। मेरे मामले में यह दूसरी तरह का था। रात में मैं कभी पढ़ रहा होता था तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे, बेटा बहुत देर हो गई है, सो जाइए।
0: अरे वाह।
2: तो उनकी ये जो प्रेरणा थी, उनका ये जो प्यार था, उनका ये जो लगाव था, वो मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। दूसरा, मेरे जो माता पिता हैं, उन्होंने मुझे इतना आत्मनिर्भर बनाया कि कभी भी, मतलब स्कूल की जो फीस भी डिपॉजिट करनी होती थी तो वो मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि वो मुझे इतना इंडिपेंडेंट बना देते थे कि बेटा ये फीस ले जाइए और आप जमा करा दीजिए. वो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने स्कूल तक लेकर गए और फिर उन्होंने किया. तो वो जो एक स्वाभिमान, वो जो एक आत्मनिर्भरता की भावना आती है, वो आप में एक ऐसा आत्मविश्वास भर देती है और वो आत्मविश्वास आगे जाकर आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है. तो मैं हमेशा ऋणी हूँ अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा किया और मुझे एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाई.
0: एक अच्छा इंसान बनने के साथ साथ आपकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी मैं बात करूं डॉक्टर आशीष जी, तो MA एंड देन PhD, मतलब पढ़ाई करना भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएशंस के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशंस के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, और आप करियर ओरिएंटेड भी थे लेकिन साथ साथ आपकी पढ़ाई भी चल रही थी, तो वो कैसे याद करते हैं आप?
2: देखिए, मैं शुरुआत में, मुझे गणित मैथमेटिक्स बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने गणित से MSc किया था. गणित से MSc करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस राह में ही आगे बढ़ना चाहिए, और मैंने कुछ समय के लिए गणित में PhD भी ज्वाइन कर ली. अच्छा। लेकिन साथ साथ मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो मुझे वाद विवाद, निबंध और इस तरह के साहित्यिक चीज़ों में हमेशा से रुचि रही थी. तो मुझे वो PhD करते करते कुछ ऐसा लगता था कि शायद मैं अपने आप को कहीं खो रहा हूं. तो मैंने उस धारा को वापस लाते हुए और साहित्य की राह चुनी और मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र को अपनाया, उसको एक होल्ट दिया. तो गणित आज भी मुझे प्रिय है, लेकिन मैंने पत्रकारिता को अपना बनाया. उसके बाद में मैंने हिंदी विषय के साथ साहित्य में स्नातकोत्तर भी किया और PhD भी किया. इस साथ साथ मैंने जनसंचार और पत्रकारिता में भी स्नातकोत्तर और नेट किया. ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मैथमेटिक्स जो मैंने अब तक पढ़ी है, या मैंने कानून की भी डिग्री ली है, तो उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए मैंने तकनीक में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए और AI और इस तरह की चीज़ों में, तकनीकी लेखन में, तकनीक की जानकारी में, इसमें अपने आप को आगे बढ़ाया. तो मैंने जो भी ज्ञान अपनी डिग्रियों से अर्जित किया, उस ज्ञान को पूरी तरह से उनका एक समन्वित रूप से उपयोग करने का फैसला किया, और शायद उसी ज्ञान ने मुझे आज जहाँ मैं हूँ वहाँ तक पहुँचने में मदद की है.
0: क्या बात है, ज्ञान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती, और आपका ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता. और आप आज राजस्थान के जाने माने टेक एक्सपर्ट के तौर पर भी आपका जो नाम है वो विख्यात है आशीष जी. अच्छा, आपके करियर की अगर हम बात करें तो एक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर के साथ आपने शुरुआत की बतौर ट्रेनी पत्रकार, और फिर वहाँ से लेकर चीफ सब एडिटर बनने तक का सफ़र जो है, आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत की और चैलेंजिंग भी रहा होगा. तो उस दौर की कौन सी चुनौतियां थीं जिसने आपको मजबूत बनाया?
2: मैंने वर्ष 2001 में समाचार पत्र ज्वाइन किया था, और उस समय इंटरनेट बहुत रेयर था. मतलब इंटरनेट की लाइंस कुछ ही जगह, कुछ ही संस्थानों में थी, और यदि प्राइवेटली भी आप उसको इस्तेमाल करते थे, तो मुझे आज भी याद है कि 40 रुपया 60 रुपया एक घंटे के हिसाब से, जिसमें स्पीड बहुत कम आती थी.
0: बड़ा महंगा था,
2: राइट? बड़ा महंगा था. हाँ. तो उस दौर में मैं बहुत किस्मत वाला रहा कि उस अखबार ने मुझे एक मौका दिया, और वो मौका ये दिया कि इंटरनेट को बतौर सोर्स यूज करना. पहली बार ये प्रयोग हुआ था कि इंटरनेट पर जो खबरें होती हैं, इंटरनेशनल खबरें होती हैं, उनको सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना. तब लोग कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते थे, तो उस समय मुझे कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ रूबरू होने का मौका मुझे मिला, और उस मौके से मैंने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड भी किया और उसको एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया.
0: आशीष जी, आपने 3000 से भी ज़्यादा लेख लिखे हैं, और कई वर्षों तक टेक्नोलॉजी को आपने आम लोगों की भाषा में समझाया, इस तरह समझाया कि बिल्कुल आसानी से, सहजता से लोगों तक जो वो बात है, इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंच सके. तो हालांकि मैं आप ही की बात का उदाहरण देते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक ज्ञान का असली ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? जानकारी देना, लोगों की सोच बदलना, या लोगों को नई नई चीज़ों से अवगत कराना?
2: देखिए, सबसे पहले आपने जो बताया है ज्ञान का

0: जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही होना चाहिए। लेकिन ज्ञान, जहाँ ज्ञान शुरू होता है, तो आज के दौर में अगर ज्ञान को परिभाषित करें तो उसके साथ सत्यता और निष्पक्षता वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ज्ञान, जिसे आप कहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर या अलग अलग ऐप्स के ऊपर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारा ज्ञान ही है। लेकिन वो ज्ञान सत्य है या निष्पक्ष है, उसकी जांच आपको करनी होगी। तो वो जो विवेक आपके अंदर आया है, जिससे आप सही गलत को पहचान सकें, आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सर्व की जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से ये तय कर सकें कि ये सही है, गलत है, या इसका किस तरीके से अच्छे विवेक के साथ उपयोग किया जा सकता है, वो ज्ञान को सिखाने का असली मकसद है।
1: जी, तो क्योंकि आप टेक एक्सपर्ट भी हैं, तो लगे हाथों आपसे ये भी जान लें कि फेक न्यूज़ और जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ज़माना है, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं, आम लोग सही और गलत की जानकारी की पहचान कैसे करें? क्योंकि जो भी खबरें आती हैं, हम सच मान ही लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, फिर उसको हम, उस खबर को हम डिसेमिनेट भी कर देते हैं आगे तक, लोगों तक पहुंचा भी देते हैं इन खबरों को।
0: देखिए, हर सामान्य व्यक्ति के लिए जो फेक न्यूज़ है या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से जो आई हुई सूचनाएं हैं, उनकी सत्यता जांचने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके सोर्स को देखिए। आप देखेंगे कि यदि किसी अधिकृत मीडिया संस्थान या अधिकृत किसी सरकारी एजेंसी से जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप ये मान सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सटीक हो सकती है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी प्राइवेट एंटिटी या सिर्फ सनसनीखेज सामग्री परोसने वाले स्रोतों से ही आई है, तो आपको एक बार उसे संदेह की निगाह से देखना चाहिए। उसके बाद आपको उसे गूगल करना चाहिए, मल्टीपल सोर्सेस के साथ आपको उसको जाँचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो किस तरह के किसी अथेंटिक सोर्स से, किसी प्रमाणित स्रोत से आपके पास अगर आपको नज़र आ रही है, तो ही उस पर विश्वास करें। दूसरी चीज़, विश्वास तो कर लें, लेकिन आप जो उसे शेयर करते हैं, उसमें आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन या जो फेक न्यूज़ है, उसकी एक चेन होती है, और आप भी अगर उस चेन का हिस्सा बन गए, उस श्रृंखला का हिस्सा बन गए, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन फैलती जाएगी। तो एक जागरूक नागरिक का आपको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो फेक न्यूज़ है या जो न्यूज़ तटस्थ नहीं है, उस न्यूज़ को आप वहीं पर रोक दें, उसकी सत्यता की परख करके उसे वहीं पर रोक दें।
1: क्या बात है, तो बहुत ही शानदार वार्तालाप चल रहा है। डियर लिसनर्स, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, तो आपको बता देते हैं, आप सुन रहे हैं हमारा ट्यूसडे स्पेशल मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल राजा पार्क जयपुर, एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे ऑन द शो, डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जी, डेप्यूटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की बात हो रही है आशीष जी, और आपने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस और राजस्थान सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को संभाला है, तो आज के समय में सोशल मीडिया सरकार और जनता के बीच किस तरह की भूमिका निभा रहा है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को?
0: हर सरकार का मकसद होता है कि वो अपने राज्य या देश, जिसको भी वो सर्व कर रही है, उसके अंतिम व्यक्ति तक सभी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ को पहुँचाए। चूंकि भौगोलिक सीमाएं, कुछ साक्षरता, कुछ संचार माध्यमों की सीमाएं, वो उन योजनाओं को वहां तक पहुंचने से रोक देती हैं, तो जो आज का सोशल मीडिया का दौर है, उसने उन सीमाओं को तोड़ने का काम किया है। क्योंकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन आज अगर हम देखें, तो भारत और राजस्थान सभी जगह लगभग 100% हो चुका है।
1: बिल्कुल।
0: और हर व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा गैजेट आ चुका है, जिसके जरिए सोशल मीडिया तक वो अपनी पहुंच बना लेता है। तो सरकार के पास ये बहुत अच्छा माध्यम है कि वो अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, उनकी जो पात्रता की शर्तें, उनसे मिलने वाले लाभ, वो सभी जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से उन लोगों तक पहुंचा दे जिनकी उन्हें वास्तव में ज़रूरत है।
1: जी।
0: इससे योजनाओं में जो एनरोलमेंट है, वो भी बढ़ रहा है, और योजनाओं में एनरोलमेंट के अलावा जो लाभ सीधे उस व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो लाभ सीधे उसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, बीच में बिचौलियों की जो भूमिका है, वो भी खत्म हो रही है।
1: जी, ये बहुत अच्छी बात है। और सोशल मीडिया के ज़रिए आप डायरेक्टली उन वेबसाइट्स तक भी पहुंच सकते हैं जहां से आप सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। और इवन अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए कि आप सब लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर यूथ जो है, जो युवा है, वो ज़्यादातर इस वक्त इंस्टाग्राम पर ही है।
0: जी, मैं यहाँ पर आप ही की बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि राजस्थान सरकार का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो राजस्थान सरकार सोशल मीडिया के साथ ही अब तो जो AI है उसको भी बहुत अच्छे से इन जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे पहुंचाने में इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी बात, जो परिवेदनाएं, जैसे जनता की, आमजन की जो परिवेदनाएं हैं, जो लोग बार बार सरकारी कार्यालयों में नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए भी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुँचाने और उनका समाधान पाने की राह भी खोली है। राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन 181 वो व्हाट्सएप सेवाओं से भी जुड़ गई है और सीधे व्हाट्सएप के जरिए लोग अपनी परिवेदनाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे आशीष जी, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। डियर लिसनर्स, आप सुनते रहिए हमारा ट्यूसडे स्पेशल मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर।
2: आप सुन रहे हैं, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, 100.3 FM।
3: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास। नन्हे कदमों से माँ की गोद तक, हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय
2: बेबी लॉन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
3: You're listening to Radio Pink City right here on 100.3 FM.
4: That's right, आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और ये है ट्यूसडे स्पेशल मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। आपके साथ मैं हूँ अनामिका और हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान आज प्रोग्राम में, डॉक्टर आशीष खंडेलवाल साहब। आप बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR, दैट इज़ DIPR में राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं और हम आशीष जी से बेहद ही खास बातचीत कर रहे हैं और बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत जानकारियां हम आपसे इस छोटे से टाइम स्पैन में ही इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं आशीष जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना चाहता है, मतलब हाथ में सबके फ़ोन है, आपने कहा ही 6 इंच का गैजेट सबके पास में पहुँच गया है, फटाफट वीडियो बनाना या कुछ भी रिकॉर्ड करना, रील बनाना लोगों का शगल भी है इस समय, शौक भी है और देखा जाए तो कमाई का भी एक जरिया बन गया है। तो आपके अनुसार आशीष जी, सिर्फ वायरल होना महत्वपूर्ण है या विश्वसनीय बनना भी, क्रेडिबल?
5: देखिए, सफलता कोई इंस्टेंट नूडल की तरह नहीं है जो 2 मिनट में मिल जाए
4: जी।
5: हो सकता है कि कोई आप एक रील बनाए और उसे सोशल मीडिया पे डाल दें और वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा देखी जाए, लेकिन उसके बाद आप दूसरी रील डालेंगे, दूसरा कंटेंट डालेंगे तो वो कंटेंट भी उतना ही देखा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
4: बिल्कुल।
5: तो अगर आप यदि अपने आप को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं तो सबसे मूल मंत्र है कि कंटेंट इज द की। आपको आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो आप एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया अगर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो मैं मेरी तरफ से कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने तो सबसे पहले अपने उस क्षेत्र को चुने जिसमें आप माहिर हैं। नीश एक ऐसा क्षेत्र आप चुन सकते हैं, जैसे कोई अगर आप भोजन पाक कला में चाहते हैं आप फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग पसंद है आप ट्रैवलर बन सकते हैं, आपको क्रोशे पसंद है तो आप क्रोशे क्राफ्ट का कुछ शुरू कर सकते हैं, लेकिन चीज आप वही लें जिसे आप दिल से पसंद करते हो।
4: Exactly.
5: क्योंकि शुरुआत में आपको जो कॉन्टेंट सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा वो आपको ना तो बहुत ज्यादा लाइक्स दिलवाएगा शुरुआत में और ना ही आपको उससे किसी तरह की आमदनी होगी। तो यदि आपका शौक पूरा हो रहा है तो आप उसको कंसिस्टेंटली, यानी आप उसको लगातार उस काम को कर पाएंगे। थोड़े दिनों तक कंसिस्टेंट तरीके से अगर आप उस कंटेंट को अपने सोशल मीडिया पर डालते रहे और कुछ स्ट्रेटेजीज अच्छे से आप फॉलो करते रहे, जैसे कुछ मेटा टैग्स लगाना, कुछ हैशटैग्स लगाना, क्रॉस प्लेटफॉर्म जो आप बूस्टिंग करते हैं वो चीज़ें आप करते रहे, अच्छा आप थंबनेल बनाना सीख गए, आजकल तो इतने AI गैजेट हैं जिनसे आप आसानी से अपना थंबनेल बना सकते हैं, तो आप एक कंसिस्टेंट तरीके से 3, 4, 5, 6 महीने तक अगर आप डेली बेसिस पर या वीक में 2 बार अपना कंटेंट अपलोड करते जाएंगे और आपका कंटेंट अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर लोग उस कंटेंट को देखना पसंद करेंगे और आपके लॉयल जो फॉलोवर है वो बनना शुरू होंगे और वो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब आपको कमेंट में कोई कुछ लिखे तो आप थोड़ा सा उनसे इंटरेक्टिव रहिए, उनको लगना चाहिए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और आप उनकी बात का जवाब दे रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए। आपके जो क्षेत्र के दूसरे लोग हैं आप उनसे भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, हो सकता है आपको उनके साथ कोलैब करने का मौका मिले तो आप कोलैब भी कीजिए, इससे एक दूसरे प्लेटफॉर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो आपस में कुछ बढ़ने का आपको मौका मिलता है। तो अगर आपने शुरुआती हर्डल पार कर लिया, हो सकता है उसमें 2 महीने लगे, हो सकता है उसमें 4 महीने लगे, हो सकता है उसमें 6 महीने लगे, तो अगर आपने एक शुरुआती हर्डल पार कर लिया तो आप उस स्टेज पर पहुंच सकते हैं जब आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होने की स्थिति में आ जाए। मैं तो इसको एक आराधना के तौर पर, पूजा के तौर पर मानता हूं कि जब आप प्रभु की आराधना रोज सुबह करते हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि मुझे इसके बदले पैसा मिलेगा या प्रभु की कृपा आज ही मुझे मिल जाएगी? वो काम आप एक निष्कपट भाव से, एक बिना लालसा के आप वो काम अपने दिल से करते हैं। बस वही दिल आपको सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में भी लगाना है, और वो काम आप भले ही रोज का एक घंटा या रोज का आधा घंटा निकाल कर आप करते चलिए, आप देखिए कुछ समय में आपको उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।
4: बड़ी सुंदर बात आपने कही है कि बिल्कुल निष्काम निष्कपट भाव से कीजिए और इसको पूजा की तरह, आराधना की तरह ट्रीट कीजिए। और जो सबसे स्पेशल बात है कि जिस चीज़ में आप कुशल हैं, सिर्फ पैशनेट होने से काम नहीं चलेगा, उसमें आपकी कुशलता होनी चाहिए, तभी वो आपका कंटेंट जो है वो हिट होगा। आपके कंटेंट की भी बात कर लूँ आशीष जी, हिंदी ब्लॉग टिप्स जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो रीजनल लैंग्वेज के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो भविष्य है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल भविष्य भारतीय भाषाओं का है?
5: देखिए, जो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस या क्षेत्रीय भाषाएं हम कहें भारत में, जैसा आप जानते हैं कि हर, कहा जाता है कि हर 30 किलोमीटर हर 60 किलोमीटर पर भाषा ही बदल जाती है,
4: बोलियां होती है
5: और भारत की जो संविधान की अनुसूची है उसमें भी लगभग 22 भाषाएं, 20 से अधिक भाषाएं को मान्यता दी हुई है, और वो बोलने वाले हमारे हजारों लाखों की तादाद में, तो धीरे धीरे ये कॉन्टेंट उन लोगों तक पहुंच रहा है। पहले दिक्कत ये होती थी कि उस भाषा में टाइप करना, उस भाषा में इंटरनेट पर लिख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल इतने टाइपिंग टूल्स आ गए हैं कि आसानी से अपना कंटेंट हम क्षेत्रीय भाषाओं में बना सकते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी जो रीच है वो रीच लाखों में हो गई है। तो उसकी वजह यही है कि हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट और गैजेट पहुंच चुका है, तो उसे जो अपनी क्षेत्रीय बोली है उस बोली में जो उसकी पसंद का कंटेंट मिल रहा है वो उसको सबसे ज़्यादा ललचाता है, सबसे ज़्यादा लुभाता है। आपने बात मेरे ब्लॉग की जो हिंदी ब्लॉग टिप्स के नाम से था, मैंने वो ब्लॉग 2006 में शुरू किया था। उस समय चुनौती यही थी कि हिंदी भाषा में इंटरनेट पर लिख पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो परंपरागत टाइपिंग टूल्स थे वो चाणक्य और कुछ अलग अलग कृतिदेव देवलिस फॉन्ट यूज़ किया करते थे। यूनिकोड उस समय बहुत कम आया था, मतलब विकसित नहीं हुआ था उस समय।
4: हिंदी टाइपिंग सीखनी भी पड़ती थी,
5: हिंदी टाइपिंग सीखनी भी पड़ती थी। तो उस समय जो आज आपको गूगल का इंडिक ट्रांसलेटर ट्रांसलिटरेटर मिलता है, जिसमें आप रोमन में टाइप करके और इंग्लिश में बनाते हैं, तो मैंने अपने ज्ञान को उपयोग करके सबसे पहला टूल एक एक की मैपिंग करके मैंने वो बनाया था, और उसको मैंने अपने ब्लॉग पे इंट्रोड्यूस किया था। वो लोगों के इतना काम आया, उसके बाद में मैंने लोगों की तकनीकी समस्याएं दूर करने के लिए उस ब्लॉग को काफी लंबे समय तक लिखा, और उस ब्लॉग ने लाखों लोगों की मदद की जो हिंदी भाषा में लिखना चाह रहे थे। फिर उसके बाद में इवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ और क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज भी बहुत अच्छे से शुरू हो गया। गूगल ने इसके लिए मुझे प्रशंसा पत्र भी भेजा जो मैंने हिंदी के लिए काम किया था।
4: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर आशीष जी, आपने जर्नलिज्म की बात करें, जनसंपर्क, अकादमिक क्षेत्र, डिजिटल मीडिया, चारों क्षेत्रों में आपने काम किया है, बराबर से आज भी आप कर ही रहे हैं, आपके लेख आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, कई रेडियो स्टेशंस पर आपकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहती है बतौर टेक एक्सपर्ट। इन तमाम भूमिकाओं के बीच अगर मैं पूछूं कि आपका पसंदीदा काम क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि देता है, मुश्किल सवाल है।
5: सवाल मुश्किल है, लेकिन इसकी जो जटिलता है वो सरलता में इस तरह बदल जाती है कि जो आपने चारों काम बताए हैं वो चारों काम एक दूसरे से अलाइंड है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। कि जब मैं पीआर कर रहा हूँ, जनसंपर्क का काम कर रहा हूँ, तो वो भी एक पत्रकारिता का हिस्सा है। मैं तकनीकी लेखन कर रहा हूँ, वो भी एक पत्रकारिता का हिस्सा है। या मैं पत्रकारिता के कुछ विद्यार्थियों के साथ कभी कोई समय व्यतीत कर रहा हूँ, तो वो भी एक तरह से पत्रकारिता ही है। तो जो बेसिक कोर पत्रकारिता का है, वो पत्रकारिता का सभी में वो आत्मा है। तो वो आत्मा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, हर काम में वो आत्मा जरूर रहेगी। तो जो चारों काम है वो चारों काम इसी तरीके से पूरे होते हैं। मैं अपने करियर की बात करूं तो 2001 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और उस दौर में भी मुझे यही था कि मैं समाज की भलाई अपने क्षेत्र में किस तरह से कर सकता हूं। तो मैंने तकनीकी लेखन और उस विधा को अपनाते हुए काफ़ी मैंने काम किया और आज मैं राजस्थान सरकार के साथ हूं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस हर अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किस तरह से पहुँचाने में सहयोग करूँ जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वो पत्रकारिता और तकनीक दोनों का जो सामंजस्य है वो लगातार चलता जा रहा है और मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ।
4: बहुत अच्छी बात है, जैसा आपने कहा कि आपको अपने काम से प्यार करना और उसमें कुशलता का आना ज़रूरी है, तभी सफलता जो है, कामयाबी जो है, वो आपको मिलती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें आप सुन रहे हैं हमारा मंगलवार विशेष मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल राजा पार्क जयपुर और बेहद विशिष्ट अतिथि हमारे साथ हैं आज डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जी, डेप्यूटी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और डॉक्टर आशीष से हम तकनीकी ज्ञान तो ले ही रहे हैं, उनसे तकनीकी बातें सीखने का हमें मौका मिल रहा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया का जो रोल है आज के दौर में उसके बारे में भी बेहतरीन बातें डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। डॉक्टर आशीष, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप क्लोजली देख रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में और आपने ट्रेनिंग भी ली है इसकी, तो AI को आप पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन के लिए किस तरह से देखते हैं, एक चुनौती के तौर पर, एक अवसर के तौर पर या एक ऐसी नॉलेज के तौर पर जिससे हम अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं?
5: देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो दौर आया है और जो सभी बड़ी दिग्गज टेक कंपनियां इस AI में कूदी हैं, तो इसके पीछे का भाव यही है कि यह एक क्रांति है। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज जिस क्रांति के आप साक्षी बन रहे हैं वो क्रांति आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार जितनी सशक्त है। हम इस दौर को देख रहे हैं इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां, हमारी पीढ़ी को जिस तरह से हम आग और पहिए के आविष्कार के बाद में दुनिया में बड़ा बदलाव आया, उस तरह से हमारी पीढ़ी के इस बदलाव को कई सदियों तक याद रखेगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मानवता की हर कार्य को, हर चीज को अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से कह लीजिए प्रभावित करने वाला है। अब अच्छा या बुरा वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं,
4: हमारे विवेक पर जी।
5: सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम युवाओं की बात करें
4: जी,
5: तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एक्स के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, कोई भी आप सोशल मीडिया ले लीजिए, वहाँ आपको AI इस्तेमाल करने का टूल सीधा ही मिलेगा, आपको कोई अलग से ऐप भी इस्तेमाल नहीं करना। अब आपको आपके कौशल की कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप अपना CV ही बना रहे हैं, आपने CV AI की हेल्प से बनाया और बहुत अच्छा बन गया, जो शायद आप 2 दिन सोच कर जिन चीज़ों को आप आपके CV में लिखते वो AI ने आपको 2 मिनट में सोच कर बता दी, तो ये हुआ इसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल। लेकिन आपने बिना उसे पढ़े अपना CV कॉपी पेस्ट करके और आगे भेज दिया, ये हुआ इसका गलत इस्तेमाल, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जो आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है, तो आपको उसको रिव्यू करना, मतलब AI के ऊपर AI लगाना। अब आप ये कहेंगे कि AI के ऊपर AI कैसे लगा सकते हैं? देखिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दूसरी AI लगाइए और दूसरी AI है अपनी इंटेलिजेंस।
4: अरे वाह।
5: तो AI के ऊपर AI जरूर लगाइए, अगर आपने AI के ऊपर AI नहीं लगाया तो ब्लंडर होगा। इतना हेलुसिनेट करता है AI, आप कोई भी फैक्ट बनाइए, कोई भी चीज बनाइए, उसमें एक बीच में 50 लाइनों में से 49 लाइंस, 49 लाइनें बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन एक लाइन में ऐसा ब्लंडर लिखा होगा कि जो आपने जिसको दिया है वो अपना सर पकड़ लेगा और आपको भगा देगा।
4: अब वो समझ भी जाएगा कि आपने अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं किया, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया।
5: सफल वो लोग हैं जो AI के ऊपर AI यानी अपनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं। तो अपना इंटेलिजेंस लगाते हुए आप चीजों को इस्तेमाल कीजिए, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब तो मेडिकल, एग्रीकल्चर, एजुकेशन ऐसा कोई फील्ड नहीं है, स्पेस, टेक्नोलॉजी, इवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जयपुर में भी आज कितने चौराहे हैं जिनके ऊपर AI से ट्रैफिक मैनेज हो रहा है। तो एआई सब जगह आने वाला है, आप इसे जल्दी अपनाएं, आप इसे देर से अपनाएं, ये आपका मानना है, लेकिन आप जितनी जल्दी अपनाएंगे आप उतना आगे रहेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए एआई के ऊपर एआई जरूर लगाना है।
4: कमाल की बात आपने की है आशीष जी। अच्छा, मैं इसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करके आपसे पूछना चाहूँगी। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बात होती है, एआई ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन है, गूगल जो है वो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज गेन करना एक अलग चीज़ है जो जनरली किताबों से मिलता है आपको। तो जो युवा आज मीडिया या पीआर की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कौन सी स्किल्स उनके लिए सीखनी ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं तो ऑब्वियसली एआई या गूगल से तो ग्रुप डिस्कशन वो नहीं करेंगे, उसके लिए नॉलेज का होना भी ज़रूरी है।
5: देखिए, आज के एक दशक पहले जो एक अच्छे पीआर या एक अच्छे जर्नलिस्ट की के गुण होते थे, उन गुणों में हम ये बताते थे कि उसे भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसे मिलनसार होना चाहिए, उसे मृदुभाषी होना चाहिए, उसे तकनीक का जानकार होना चाहिए, उसका लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए, उसे चीज़ों को तात्कालिक रूप से उसकी जो क्षमता है, अवलोकन करने की क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशन वो कर पाए, वो उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज एक दशक बाद भी उतनी मायने रखती है, लेकिन इसके साथ में अब जो चीज़ें और जुड़ गई है वो ये जुड़ गई है कि उसे फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आज का जो मीडिया है, आज का जो पीआर है, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। मतलब वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि आप किसी घटना स्थल पर गए हैं, उस घटना की रिपोर्टिंग की है, फिर आप आपके इंस्टीट्यूशन में आए हैं, फिर आपने वो रिपोर्ट सबमिट की है, फिर वो रिपोर्ट एडिट हो रही है, फिर वो रिपोर्ट उसके बाद पब्लिश हो रही है, और इस सब के बीच में 4 से 6 घंटे लग गए हैं। वो दौर अब खत्म हो गया है। अब दौर वो आ गया है कि आप घटना स्थल पर गए हैं, और जब आप लौटने वाले हैं तो आपने उससे पहले ही आपकी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जब तक आपके ऑफिस में पहुंचे हैं उससे पहले

0: मुझे याद है वो दौर जब हम पत्रकारिता में हुआ करते थे, तो हम एक न्यूज के लिए घंटों घंटों अपने ऑफिस से निकलकर अधिकारियों के साथ बैठते थे, उनके साथ चाय पीते थे, सीधा सीधा न्यूज नहीं मिलती थी, उनके साथ संबंध बनाने पड़ते थे, वो अच्छे जब उनके साथ ट्यूनिंग हो गई है तो वो ट्यूनिंग के बाद में उनके पास से हमें कुछ ऐसी खबरें मिलती थी जो हम अखबार में प्रकाशित कर सकते,
1: स्टोरी ढूंढनी पड़ती
0: ढूंढनी पड़ती थी। आज व्हाट्सएप के ऊपर आप आपके ऑफिस में बैठे बैठे व्हाट्सएप पे एक हाय लिखते हैं और वो सब आ जाता है, लेकिन वहां से वो घनिष्ठता नहीं बनती है। तो वो जो घनिष्ठता है आपकी मित्र मंडली है, आपके जो रिश्तेदार है, उनसे आप शुरू कीजिए कि एक बार सोशल मीडिया के दौर को थोड़ा कम करके उनसे इन पर्सनल, उनसे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना एक बार शुरू कीजिए। एक दिन के लिए थोड़ा सा डिजी, एक दिन के लिए तो खैर आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ घंटों के लिए आप फोन के नोटिफिकेशन बंद करना सीखिए, कुछ समय के लिए डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। कभी कभी ये सोच लीजिए, सिर्फ एक इस सवाल को अपने मन से पूछिए कि आपने आपके फोन को खरीदा है या फोन ने आपको खरीदा है। हर व्यक्ति की स्थिति है कि उसके फोन ने उसे खरीदा है, जब उसका नोटिफिकेशन बजेगा, जब उसकी रिंग होगी, आपकी मजबूरी है कि आप उसको, आपको उसे देखना ही पड़ेगा। इस मजबूरी को खत्म कीजिए। अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आते हैं, आपके फैमिली, आपके जॉब से रिलेटेड, उनके रिंगटोन अलग लगा लीजिए, वो आपको पिक करने हैं। लेकिन जो जो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन हैं, जिनको आप 4 घंटे बाद भी देखेंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: actually,
0: तो क्यों आप हर समय 24 घंटे उनके साथ जुड़े रहे? एक अपने लिए पर्सनल स्पेस निकालिए, अपना मी टाइम निकालिए, अपना एनालॉग टाइम निकालिए। इस डिजिटल टाइम को छोड़ते हुए अपना एक एनालॉग टाइम निकालिए, प्रकृति को महसूस कीजिए, बगीचे में घूमने जाइए, सुबह ओस की बूंद देखिए, गुनगुनी धूप को देखिए। आज की युवा पीढ़ी ज्यादातर ये देखा जा रहा है कि वो थोड़ा सा रात को लेट सोना इस सोशल मीडिया की देन है वो, और सुबह लेट उठना शुरू किया करती है। तो सुबह की एक बार सूर्योदय देखिए। 3 दिन तक आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 3 दिन तक लगातार आपने सूर्योदय देख लिया, तो 4th दिन से आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आपको देखना, आपको खुद को इच्छा होगी कि आप उस सूर्योदय को देखें। तो एनालॉग जिंदगी को थोड़ा सा अपने जीवन में स्थान दीजिए, डिजिटल जिंदगी को थोड़ा सा छोड़िए।
1: बहुत अच्छी आपने बात कही कि और जो डिजिटल कनेक्शन हम बना रहे होते हैं, उससे बाहर निकल के हमें सोशलाइज करना भी ज़रूरी है, सोशली लोगों से कनेक्ट होना भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, नेगेटिविटी भी है डॉक्टर आशीष, और ट्रोल कल्चर भी है। इन सब के बीच पॉजिटिव डायलॉग कैसे बनाया जाए, क्योंकि ट्रोलर्स जो होते हैं बहुत नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कई बार बड़ी भद्दी बातें भी उसमें होती हैं, हर मैसेज का रिस्पॉन्स देना भी ठीक नहीं है। तो इन तमाम नेगेटिविटीज़ के बीच में एक इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर या जर्नलिस्ट किस तरह से पॉजिटिव बना रहे?
0: देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो कंटेंट इन्फॉर्मेशन है या एजेंडा है। अगर आप इन्फॉर्मेशन और एजेंडा के बीच में फ़र्क करना सीख गए, तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ आपको रिएक्ट करना है और कहाँ रिएक्ट नहीं करना है। एजेंडा, मैं ये नहीं कह रहा सारे एजेंडा बुरा है, जो भी एजेंडा आपको अलाइन करता है, आपकी सोच से मेल खाता है और वो एजेंडा समाज और देश के हित में है, तो आप उस एजेंडा के साथ जाइए। लेकिन जो एजेंडा समाज विरोधी है, जो एजेंडा राष्ट्र विरोधी है, उस एजेंडा पे आप कोई भी रिएक्शन या कमेंट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप ये याद रखिए, युवाओं के लिए खास मैसेज ये है कि युवा, आपका डिजिटल फुटप्रिंट बहुत मायने रखता है। आप किस पोस्ट को लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो, वो सब हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप एक किसी जॉब के लिए जाएंगे या मैट्रिमोनी, शादी का भी कई बार होता है, तो आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बहुत ज्यादा खंगाले जा रहे हैं। आपने कैजुअली बिना किसी सोच के, आपने सिर्फ इसलिए उस पोस्ट को लाइक कर दिया क्योंकि वो फला व्यक्ति ने किया था, आप उस फला व्यक्ति को पसंद करते हैं, लेकिन उस फला व्यक्ति के जो विचार थे वो विचार अच्छे नहीं थे, आपने उन विचारों को पढ़ा ही नहीं और आपने केवल उसे लाइक कर दिया। अब वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन गया, इससे ये लग रहा है कि आपने उसके विचारों को सहमति दे दी है। तो कुछ भी आप डिजिटल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी आप डिजिटली एंगेजमेंट कर रहे हैं, एंगेजमेंट में लाइक करना भी है, एंगेजमेंट में कमेंट करना भी है, एंगेजमेंट में शेयर करना भी है, तो अगर आप ये तीनों एक्टिविटीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो आप तभी कीजिए जब आप उस पोस्ट, उस कंटेंट के साथ इत्तेफाक रखते हैं, वो कंटेंट आपकी विचारधारा से

0: मेल खाता है, आपने उसकी सत्य निष्ठा परख ली है, आपने उसकी विश्वसनीयता परख ली है, तभी कीजिए, क्योंकि आप ही मानिए कि वो हमेशा के लिए आपका विजिटिंग कार्ड है। जिसको भी आपके बारे में जानना होगा वो आपकी एक्टिविटीज को देख लेगा और पहचान लेगा कि आपकी विचारधारा क्या है, आप किस सोच को रखते हैं, आप किस तरह की जीवन शैली आप अपनाते हैं और आपका आगे विजन क्या है, वो सब उससे परिलक्षित हो जाता है।
1: तो मेरे दो सवाल में से एक सवाल अभी भी रह गया आशीष जी, कि ट्रोलर्स जो हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, उस नेगेटिव माइंडसेट को खुद पे हावी होने से हम कैसे बचाएं?
0: देखिए, जो इंस्टाग्राम कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, एक्स कह लीजिए, ट्रोलर्स की बात करेंगे तो हम एक्स प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा आते हैं। वहां आपके लिए स्पून फीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। स्पून फीडिंग का मतलब यही है कि आपका फोन सुबह आप नींद से जब आप उठते हैं उससे पहले इतने नोटिफिकेशन दे चुका होता है और आप जब पहली बार फोन को खोलकर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है बहुत सारी चीज़ों को जो देश में दुनिया में घट रही हैं, उन चीज़ों को लेकर उन पे उनका नज़रिया, मतलब जिन लोगों ने पोस्ट किया है उनका नज़रिया, और फिर वो नज़रिया आपको अच्छा लगने लगता है और आप उस चीज़ को उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। तो ये जो नज़रिया बदल रहे हैं, ये नज़रिया बदलने का काम ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके बदले कुछ पारितोषिक मिल रहा है, कुछ उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आपने आप अपने विवेक को छोड़कर उन लोगों की बात को मानकर अपना नजरिया वैसा बना लिया है तो आप उन ट्रोलर्स की बातों में आ गए। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, जिन लोगों की बातें केवल ट्रोलिंग में आती हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो इग्नोर करना शुरू कीजिए, उनकी किसी बात पर कुछ लिखिए ही मत। आपकी फीड में धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, आप उनको देखेंगे भी नहीं। तो सोशल इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स तीनों का एल्गोरिदम ये कहता है कि आप उनकी पोस्ट पे क्लिक नहीं करेंगे, उन पे एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो आपको दिखना कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपको दिखती है तो आप उनको अनफॉलो कर दीजिए, आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स पे उनको ब्लॉक करने का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। एक्स प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ लिस्ट बनाने का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपको जिन लोग जो पसंद है उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए, तो आपकी फीड में, फिर आप लिस्ट पर जाइए, आपकी फीड में वही पॉजिटिव चीज़ें, वही सारी चीज़ें आएगी। हो सकता है आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ पसंद हो तो आप उन हैशटैग्स को फॉलो कीजिए, उन हैशटैग्स से जुड़ी हुई जो फीड है वो आपकी टाइमलाइन में नज़र आने लगेगी, आप उनको देखिए। मतलब आप ये मान लीजिए जिस तरह से आप घर की सफाई करते हैं, जैसे साल में एक बार दिवाली पर हम घर की सफाई करते हैं, तो आप ये सोचिए कि इस बार मैं अपनी सोशल मीडिया फीड की सफाई करूंगा।
1: जी बिल्कुल।
0: और सोशल मीडिया फीड की आपने सफाई शुरू कर दी ना, तो आप यकीन मानिए कि फिर वही कंटेंट आपके पास आएगा जो कंटेंट आप पसंद करते हैं, ट्रोलर्स का कंटेंट फिर आपके पास आना बहुत कम हो जाएगा
1: और एक तरह से मानसिक शांति भी मिलती है उसके बाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल आशीष जी, आप 25 साल से प्रोफेशनल जर्नी अपनी जो है बेहतरीन तरीके से आप लीड कर रहे हैं, तीन जीवन मंत्र, मतलब या तो लाइफ मंत्र ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो 25 सालों का निचोड़ है, ऑब्वियसली यात्रा काफ़ी लंबी होने वाली है आगे जा कर के, इस पूरी यात्रा को अगर मैं एक सेंटेंस में आपसे जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे?
0: आपने जो तीन मंत्र बताए, मैं तीन मंत्रों की बात करूं तो पहला मंत्र हो सकता है जिज्ञासा और सीखने की भूख। तकनीक और दौर बदलते रहेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप कभी अपनी प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस नहीं खोएंगे, चाहे दौर कितना ही बदल जाए। दूसरा है विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा। अल्पकालिक प्रसिद्धि या वायरल होने से ज्यादा जरूरी है लोग आपके काम और आपकी बात पर भरोसा करें। और तीसरा है सहानुभूति और जमीन से जुड़ाव। आप चाहे जिस भी पद पर, जिस भी ऊंचाई पर, जिस भी सफलता पर पहुंच जाए, लेकिन आपकी यदि सहानुभूति और जमीन से जुड़ाव नहीं छोड़ेंगे तो आप हमेशा एक अच्छे इंसान, देश के एक अच्छे नागरिक बने रहेंगे। अगर इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में कहा जाए तो बदलाव के हर दौर को स्वीकारते हुए सत्य और संवेदनशीलता के साथ समाज में बदलाव लाने का निरंतर और विनम्र प्रयास रही है मेरी यात्रा।
1: और यही प्रयास आप करते भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ आए, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और इतनी ज्ञानवर्धक बातें आपने हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्हे कदमों

0: सीमा की गोद तक हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबीलोन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
1: आप सुन रहे थे मोटिवेशनल बूस्ट पावर्ड बाय बेबीलोन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर गौरव यादव। नेक्स्ट आवर गुनगुनाते लम्हे, जहां आपकी चॉइस के गाने। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
3: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
4: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
5: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
4: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
5: सच?
4: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
5: समझ गया।
6: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
7: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
6: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
7: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
8: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
9: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क, जस्टिस देख कर ही खरीदें।
10: शानदार गाने,
11: शानदार गाने, शानदार गाने।

आया है आपको सुनाने। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

सुबह के 10:07 40 seconds ऑन द डॉट। एक बड़ा ही प्यारा शेर है जो मुझे याद आ गया प्रोग्राम शुरू करते करते ही। पहला नशा पहला खुमार, फिल्म का नाम जो जीता वही सिकंदर, साधना सरगम, उदित नारायण की आवाज़ें, जतिन ललित का म्यूज़िक है एक कमाल, और मौसम भी खासम खास, तो हो गया ना सारा का सारा अमेजिंग। शेर कुछ इस तरह से है कि एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक समंदर है जो काबू में है मेरे, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक उम्र है बितानी है जो उसके बगैर, और एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। क्या बात है ना, सोच करके देखिए कितना प्रोफाउंड, कितना डीप, कितना गहरा इसका जो है अर्थ निकल करके आता है। तो लम्हों की बात हुई है तो गुनगुनाते लम्हे लेकर के हम आपके बीच आ चुके हैं। मंगलवार विशेष आपका गुनगुनाते लम्हे 10 से 11 ये प्रोग्राम का हम टाइम जो है आपके लिए लेकर आते हैं, और आपका रिक्वेस्ट शो है। अच्छी बात ये है कि आज आयशा झुलका जी का बर्थडे है, तो आयशा झुलका जी के गाने आपको जो भी सुनने हैं दनादन धड़ाधड़ आप मुझे बता सकते हैं 2200-800 या 2200-700 पे कॉल करके, या फिर हमारा फेसबुक पेज तो जिंदाबाद है ही, रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम का फेसबुक पेज, वहाँ जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी चॉइस का गाना लिख दीजिए। आयशा झुलका स्पेशल गाने आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा स्पेशल भी हो जाएगा। जब तक आपकी आयशा झुलका स्पेशल रिक्वेस्ट आती है तब तक पंकज अरोड़ा जी आपके लिए प्ले कर देती हूँ। फिल्म का नाम अनामिका और किशोरदा की प्यारी सी वॉइस। हाय, इस वॉइस का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, और गाना जो है वो खुद सुन लीजिए, बद्दुआओं से भरा गाना है लेकिन है बड़ा कमाल का। आइए सुनते हैं राइट हियर राइट नाउ ऑन रेडियो पिंक सिटी।

0: पंचम दा का म्यूजिक, किशोर दा की आवाज, फिल्म का नाम अनामिका, 1973 की फिल्म, संजीव कुमार के साथ जया बच्चन जी, कमाल का गाना गुनगुनाते लम्हे आप सुन रहे हैं। और मेरे ख्याल से महेश जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अगर उन्होंने धैर्य का एग्जाम्पल दिया होगा। महेश जी आप लाइन पर हैं?
1: बिल्कुल मैम।
0: नमस्कार महेश जी, कैसे हैं?
1: नमस्ते।
0: तो जो शेर आपने लिखा है फेसबुक पर, मैं चाह रही थी एक बार आप उस शेर को पढ़ें।
1: मशहूर होने का शौक नहीं मुझे, बस आप पहचानते हैं इतना काफी है।
0: क्या बात है, मशहूर होने का शौक नहीं हमें, बस आप हमें पहचानते हैं इतना काफी है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका गुनगुनाते लम्हे में महेश जी। कौन सा गाना आपके लिए प्ले करूं
1: मैं? कुर्बान फिल्म का गाना है।
0: गाना आपको मालूम है? हाँ, गुनगुनाना पड़ता है।
1: जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रसता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिनारे। थैंक यू।
0: बहुत खूबसूरत गाना है, फिल्म का नाम है कुर्बान। और आयशा जुल्का जी जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, उनके लिए हम प्ले करते हैं। थैंक यू महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो आयशा जुल्का 28 जुलाई 1972 में जन्मी इंडियन एक्ट्रेस हैं, प्रिमारिली अपीयर्स इन हिंदी फिल्म्स, साथ ही साथ बंगाली, कन्नड़ा और तेलुगु फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है। और 3 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। तो कुर्बान फिल्म से प्ले कर रही हूँ ये धरती चांद सितारे, और उसके बाद मोहम्मद रियाज जी आपकी रिक्वेस्ट पे वादा रहा सनम फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी, 2 सुपरहिट गाने बैक टू बैक आपके लिए, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: बस प्यार रहेगा यहाँ रे।
1: Back to back, only on 100.3 FM, Radio Pink City.

0: गाने के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. फैक्ट है एक्चुअली, अभिजीत ने इस गाने को गाया, अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलॉन्ग विद अलका याग्निक. तो अभिजीत साहब को पता ही नहीं था कि ये गाना आगे जाकर के सुपर डुपर हिट हो जाएगा. जब बाद में उनसे पूछा गया कि इस गाने को गाते समय आपको कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने अपना 100% इस गाने को गाने में नहीं दिया. वो आज भी इस बात का अफसोस करते हैं. उन्हें लगता है कि इस गाने को वो और भी ज़्यादा मधुरता से और भी ज़्यादा इमोशंस के साथ में गा सकते थे. वादा रहा सनम, खिलाड़ी फिल्म से भाटिया हनी, मोहम्मद रियाज, सोनू, शफीक, अल्फेज, आप सभी के लिए और उन सभी के लिए जिनको ये गाना पसंद है. गुनगुनाते लम्हे में लीना जी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं. लीना जी, आर यू देयर ऑन द लाइन? गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू?
1: गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग.
0: क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब कुछ?
1: सब बढ़िया बिल्कुल, बस आप ही को सुनते रहते हैं.
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच. रेडियो पिंक सिटी के आप सब लोग फैन हैं एंड वी आर सो ग्लैड टू नो दिस. लीना जी, आज आपकी रिक्वेस्ट क्या है बताएं?
1: एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम दीवाना, इट्स अ ओल्ड नंबर, मुकेश जी की आवाज में है ये गाना एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग.
0: क्या बात है. अगर ये आपका फेवरेट सॉन्ग है तो यू हैव टू हम दिस सॉन्ग ऑन रेडियो पिंक सिटी.
1: ओके, कम ऑन, आई विल ट्राई.
0: प्लीज प्लीज प्लीज डू दैट.
1: ओके.

0: वाह, क्या कमाल की पोइट्री है, बहुत खूबसूरत। उसी मालिक ने तो मुझे भी मोहब्बत दी है ना।
1: या जी तो मोहब्बत दी है।
0: अमेजिंग अमेजिंग लीना जी, आइए आपका गाना सुनते हैं ना। थैंक यू सो मच। सेम ईयर मैम, सेम ईयर, हैव अ गुड डे। तो लीना बिंजू जी की रिक्वेस्ट पर ए सनम, जिसने तुम्हें चांद सी सूरत दी है, इनफैक्ट लीना जी को क्रेडिट जाता है, मैं भी इस गाने को आज पहली बार सुनूंगी मुकेश जी की आवाज में, फिल्म का नाम दीवाना। और उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा एंड देन एक फेसबुक रिक्वेस्ट, एक अमेजिंग सा ट्रैक उसके बाद हमने लाइन अप कर रखा है आप ही के लिए। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: एक नई खुशी। जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: City 100.3 FM, सुनते रहो।

0: त्रिवेणी नगर से अशोक कनौजिया जी का मैसेज है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। फिल्म का नाम मेहरबान, सोनू निगम की बिगिनिंग थी करियर में बॉलीवुड में, और उस दौर का ये गाना अनुराधा पौडवाल के साथ, ब्यूटीफुल ट्रैक। हैप्पी बर्थडे आयशा जुल्का कहते हुए। मुनीर नियाजी साहब की एक बड़ी प्यारी सी नज्म है, गजल है इनफैक्ट, कहते हैं कि कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, कुछ बातें अनकही रहने दो, कुछ बातें अनसुनी रहने दो, सब बातें दिल की कह दी अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, सब बातें उसकी सुन ली अगर फिर बाकी क्या रह जाएगा, एक ओझल बेकली रहने दो, एक रंगी अनबनी दुनिया पर एक खिड़की अनखुली रहने दो। मुझे ये बात इनकी बहुत पसंद आती है कि हर बात सभी को नहीं बताई जाती, इसलिए कुछ बातें जो हैं वो अनकही रहनी चाहिए और कुछ बातें अनसुनी भी होनी चाहिए, ताकि मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। सुरेश जी मेरे साथ लाइन पर हैं। सुरेश जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार,
0: कैसे हैं आप?
1: मजे में।
0: कौन सा गाना सुनेंगे सुरेश जी? मजे में
1: तुमको हम इतना, होटल फिल्म का
0: गाना तो बहुत बहुत शानदार गाना है, और मुझे मालूम है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। आपको गुनगुनाना पड़ेगा थोड़ा सा, दो लाइन।
1: गुनगुना रहे थे, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
0: अच्छा, ये गुनगुना दिया आपने, चलिए। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। तो सुरेश जी की रिक्वेस्ट पे प्ले करते हैं मनहर उदास की आवाज में, आशा जी भी हैं साथ में। फिल्म है होटल, 1981 में आई थी, और क्या कमाल की कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल अमेजिंग। उषा मंगेशकर जी की है शायद, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, आइए सुनते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारी फेसबुक रिक्वेस्ट आपके लिए लाइन अप कर रखी है। स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका, सुनते रहिए गुनगुनाते लम्हे, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
6: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
5: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
6: सच?
5: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
6: समझ गया।
7: सुनते रहो।
8: लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है। आइए सुनते हैं बलमा का गाना, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। कुमार शानू और आशा जी की आवाज में, सुशीला दत्ता जी की रिक्वेस्ट, बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट है सुशीला जी, थैंक यू सो मच। आइए एंजॉय करते हैं बेहतरीन गाना, ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी।

आप सुन रहे हैं गुनगुनाते लम्हे, दो मिनट बाद सुन रहे थे हो जाएगा, इसलिए जाते जाते आपको बताऊं, इस आर से जाते जाते आपको बताऊं, आयशा जुल्का जी का आज बर्थडे है, तो मैक्सिमम उन्हीं के गाने प्ले करने की कोशिश हुई। एंड थैंक यू सो मच डियर लिसनर्स आपकी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट्स के लिए। बहुत सारी रिक्वेस्ट और हैं फेसबुक पर, सारी तो एक दिन में प्ले हो नहीं सकती हैं, इसलिए मधु टहलियानी जी आपका गाना मैं चुन रही हूँ। फिल्म का नाम है दलाल, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरे, मन में हलचल सी हो जाएगी बावरे सांवरे, जो भी है ये गाना मैं प्ले कर रही हूँ आयशा जुल्का को हैप्पी बर्थडे कहते हुए। और नेक्स्ट आर हम मिलेंगे ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी में, कोहिमा की सैर हम करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी अनामिका, सुनते रहिए 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी
1: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

11:06 पूरे होते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी का टाइम है, जहां एक ऐसे शहर की हम सैर करेंगे जहां हवा भी गुनगुनाती है। गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई, ये गाना प्ले किया आपके लिए सुरेश वाडेकर जी के साथ कुमार शानू की प्यारी सी आवाज़ में। इस गाने को लेकर के एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि इसे लिखा डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, हमारे देश के बड़े ही ख्यातनाम वो शायर रहे। और बशीर बद्र साहब जो थे वो फिल्मों के लिए लिखना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विशाल भारद्वाज ने उनको स्पेशली कन्विंस किया, कई महीनों तक उनको मनाया, तब जा कर के वो उनकी फिल्म में इस गाने को लिखने के लिए तैयार हुए। और क्या शानदार कॉम्पोजिशन है ना, गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई। तो हम चल रहे हैं ग्लोबल जर्नी में ऐसे शहर जहां हवाएं गुनगुनाती हैं। कोहिमा की बात होगी आज, नागालैंड की दिल धड़काने वाली राजधानी है, और जिंदगी का ग्रीन एस्केप मतलब हरियाली की तरफ भाग जाना चाहते हैं ना, तो नागालैंड पहुंच जाइए, कोहिमा पहुंच जाइए। सोच करके देखिए, मतलब हम तो इमेजिन करते हैं बैठे बैठे कि पहाड़ों के बीच खड़े हों और आसपास हो हरा रंग, नीचे बादलों का बिस्तर और दूर तक फैली हरियाली। कोहिमा को रेलम ऑफ अनटेम्ड ब्यूटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के हर कोने में प्रकृति अपनी कहानी लिखती रहती है। यहाँ का इंतांकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 200 स्क्वायर किलोमीटर का एक हरा भरा स्वर्ग है, रेयर फ्लोरा एंड फौना से भरा हुआ है। और अगर किस्मत साथ दे जाए तो यहाँ पर आपको गोल्डन लैंगर दिख सकता है, वो सुंदर प्राइमेट होते हैं जिसका गोल्डन कोट सूरज की रोशनी में चमक उठता है। अगर आप पक्षी देखने के शौकीन हैं, बर्ड वॉचर हैं, तो पुली बादजे सेंचुरी है यहाँ पर, वो भी स्वर्ग है, पैराडाइज है लिटरली। रंगों और आवाज़ों का एक आप उड़ता खिलखिलाता चहकता ऑर्केस्ट्रा जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, कोहिमा सिर्फ नेचर नहीं, कल्चर का किलाइडोस्कोप भी है, बड़ा ही खूबसूरत है। हर साल दिसंबर में यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो पूरी दुनिया से सैलानी इस फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं। कलरफुल डांसेस होते हैं, एनर्जेटिक ड्रम्स वहाँ पर बज रहे होते हैं, और रंग बिरंगे परिधान, साथ ही साथ जो है यहाँ का स्थानीय भोजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट माना जाता है। जब आप जाएंगे तो आप भी चखेंगे ऑब्वियसली। तो कुल मिलाकर कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है एक कल्चरल एक्सप्लोजन है। यहाँ पर आपको तीन शब्द एक साथ आप देख सकते हैं, एनर्जी भी है इस फेस्टिवल में और ट्रेडिशन जो वहाँ की परंपरा है वो आपको देखने को मिलेगी, और ये सब मिलकर के कमाल का जादू बिखेर देते हैं। और अगर आपको शांति चाहिए, खामोशी, सीरेनिटी, तो मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल ये है यहाँ पर, आप क्वाइट ब्यूटी जो है इस प्लेस की वो आपका दिल जीत लेगी। तो भाई ऐसा है कि ज़िंदगी की रेस से आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो आप रुख कर सकते हैं कोहिमा का, जहाँ नेचर भी थेरेपी है और कल्चर एक सेलिब्रेशन। कोहिमा के बारे में बात होगी और खूबसूरत गाने भी आपके लिए यहाँ पर होते रहेंगे। सुनते रहिए ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

लव दिस लाइन की प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है, और हुस्न पहाड़ों का देखना है तो रुख कर लीजिए भाई कोहिमा का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे वाइब्रेंट, सबसे एनर्जेटिक और सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन का नाम है कोहिमा। और कोहिमा का नाम आते ही सबके दिल में चमक उठती है एक फेस्टिवल की, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो एनर्जेटिक है और बिल्कुल कल्चरल फोकस होता है इसके ऊपर। हर साल दिसंबर में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, और किसामा हेरिटेज विलेज जो है यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ग्रैंड स्टेज जैसा बन जाता है ये गांव, जहाँ नागालैंड की सारी ट्राइब्स अपनी रिच हेरिटेज को दुनिया के सामने पेश करती हैं। इमेजिन कीजिए कलरफुल शॉल्स, पावरफुल डांस परफॉर्मेंसेस और ग्रेसफुल हॉर्नबिल डांस, और साथ ही साथ आइकॉनिक नागा किंग डांस भी यहाँ पर होता है। मतलब ये सारा नज़ारा जो होता है ना, आपको हड्डियों तक फील होगा, बिल्कुल बाहें आपकी भी फड़कने लगेंगी जा कर के ऐसे डांस को देख करके। बड़ा ही शानदार और जोशीला डांस किया जाता है। यहाँ के क्राफ्ट बाजार होते हैं एक ट्रेजर की तरह से हैं। हाथ की बनी हुई ज्वेलरी यहाँ पर मिलेगी, मोतियों का काम मिलेगा, आप शॉल की परचेजिंग यहाँ से कर सकते हैं, खरीदारी, और बांस से बनी हुई बड़ी प्यारी प्यारी छोटी मोटी कलाकृतियाँ यहाँ पर मिलती हैं। सब कुछ इतना ब्यूटीफुल कि बस आप देखते रह जाएंगे। और खाने की बात भी मैंने की, जो स्थानीय भोजन है यहाँ का, लोकल फूड जो है, ज़्यादातर स्मोक्ड होता है, मतलब तंदूर से पकाया जाता है या धुएं में पकाया जाता है यहाँ का खाना। और स्पेशल जो डिश है यहाँ की वो है बैम्बू शूट की करीज, मतलब बांस जब शैशवावस्था में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनके शूट्स की सब्जी यहाँ पर बनाई जाती है। और फायर रोस्टेड डेलिकेसीज आपको मिलेंगी, राइस के बने हुए, चावल के बने हुए पेय पदार्थ आपको मिलेंगे। बिल्कुल फ्लेवरफुल एडवेंचर आपके लिए हो सकता है अगर आप कोहिमा जाते हैं तो। हॉर्नबिल फेस्टिवल एक इवेंट नहीं है बल्कि अपने आप में एक फीलिंग है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इस कल्चर में, इनके कलर्स में, रिदम में आप बिल्कुल रच बस जाएंगे, खो जाएंगे। तो अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एक रंग बिरंगी जगह जाऊं जहां हरियाली भी हो और इंस्टाग्रामेबल पोस्ट में मतलब पोस्ट कर सकूं और मेमोरेबल भी हो पूरी की पूरी मेरी यात्रा, मेरा सफ़र, तो आपको कोहिमा का हॉर्नबिल फेस्टिवल ज़रूर देखना चाहिए। ये ट्रिप आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप सुन रहे हैं ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, हम बात कर रहे हैं कोहिमा की और साथ ही साथ खूबसूरत गाने आपके लिए। सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: Hey, do you want to hear this?
1: जयपुर के दिल की धड़कन 100.3 FM

ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, बात हो रही है कोहिमा की और हमारी लिसनर हैं सुशीला दत्ता जी, वो घूम के भी आ चुकी हैं कोहिमा। अच्छी बात है सुशीला जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे वाइब्रेंट, सबसे इनर्जेटिक और सबसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे हैं जिसे कोहिमा कहते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग के, विल्डरनेस के, सीरीन वैलीज, मतलब खूबसूरत खामोश घाटियों के और पर्वतों के दीवाने हैं, पर्वतों का जादू देखना चाहते हैं, तो कोहिमा आपके लिए परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन है। जापफू पीक है यहाँ पर, नागालैंड का सेकंड हाईएस्ट पीक है, और रग्ड पाथ्स हैं, मिस्टी ट्रेल्स, और टॉप से मिलता है एक पैनोरामिक व्यू। मतलब एक बार आप ऊंचाई पे चढ़ गए तो दुनिया आपको लिटरली कदमों में लगेगी, आपको गाना याद आने लगेगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। लेकिन एडवेंचर के साथ अगर ब्यूटी भी चाहिए तो आप ज़ुकोऊ वैली जा सकते हैं, नाम ही काफ़ी है, फूलों की वादियाँ हैं भाई। और यकीन मानिए स्प्रिंग सीजन में अगर आप गए यहाँ पर तो ये वादी आपको एक पेंटिंग की तरह से नज़र आएगी। बहुत सारे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल, लिलीज हैं, ऑर्किड्स हैं, और भी नाना प्रकार के फ्लावर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि प्रकृति ने एक रंग बिरंगा कालीन जो है वो बिछा दिया है। वाइल्ड लाइफ लवर हैं अगर आप तो कोहिमा आपके लिए जैकपॉट है। इंतांकी सेंचुरी के डेंस फॉरेस्ट, बड़े घने जंगल हैं, गोल्डन लांगूर की झलक, यूनिक स्पीशीज आपको बर्ड्स की देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरह की चिड़ियाएँ, खूबसूरत तितलियाँ आपको मिलेंगी देखने को, जिनके पीछे दौड़ने का, भागने का जी चाहेगा, और एनिमल्स भी अलग अलग तरह के हैं। मतलब ये प्लेस जो है अपने आप में रॉ है, अनटच्ड है, और ट्रूली मेस्मराइजिंग आप कह सकते हैं जा करके। मतलब आप वो कहते हैं ना, विभोर हो जाना, भाव विभोर हो जाना, वैसा आपके साथ में हो जाएगा। तो आप चाहे सोलो ट्रैवलर हो, एडवेंचर जंकी हो, फोटोग्राफर हो, या फिर प्रकृति को प्रेम करने वाले हो, कोहिमा आपको वो पल, वो लम्हे, वो क्षण देगा जिसे आप जिंदगी जिंदगी भर चेरिश करेंगे। और गाने भी ऐसे जिसे सुनकर के आप बार बार फेसबुक पे तारीफ करेंगे कि वाह क्या गाने प्ले किए। थैंक यू प्रीति जी, सुशीला जी, सुनीता जी, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, अशोक साहब, पंकज अरोरा साहब, अमित कुमार नामा जी, महेश जांगिड़ जी, आप सब लोगों के मैसेजेस मैं पढ़ती रहती हूँ यकीन मानिए, और पूरी कोशिश होती है कि अच्छे गाने आपके लिए प्ले किए जाएं, जैसे कि ये वाला सुनिए।

0: Bang on, you've tuned into the right frequency, Radio Pink City 100.3 FM.
1: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
2: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
1: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
2: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
3: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131 132 आतिश मार्केट।
4: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: You're listening to Radio Pink City right here on 100.3 FM.

लता जी के साथ किशोरदा की आवाज़ हो, कमाल के डुएट इन दोनों ने दिए हैं। क्या खूबसूरत गाने, बिल्कुल अमर गाने। एक शानदार शहर की हम सैर कर रहे हैं कोहिमा की, और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ग्लोबल जर्नी विद रेडियो सिटी, विद रेडियो पिंक सिटी विद मी अनामिका। तो कोहिमा की बात हो रही है। ये शहर अपने आप में एक सिम्फनी है, नेचर की मेलेडी, कल्चर की रिदम और इतिहास भी, आपको इतिहास का दिल धड़कता आपको यहाँ पर सुनाई देगा। कोहिमा के आसपास है खोनोमा, जिसे विलेज ऑफ द ग्रीन वॉरियर्स कहा जाता है। ये लोग कभी हेड हंटर्स हुआ करते थे और आज शांति और इको लिविंग के ये दूत हैं, एम्बेसडर्स का काम करते हैं। तो भाई, ऊंचे नीचे रास्ते, जंगल और खूबसूरत नज़ारे, सब कुछ कोहिमा में हमें ये सिखाता है कि प्रकृति सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए होती है, फील करने के लिए होती है। और यहाँ पर आप प्योर आर्ट अगर देखना चाहते हैं तो आपको लूम्स मिलेंगे, जिस पर बनती हुई इंट्रिकेट वीव्स होती हैं, जिसे देख करके आप चकित रह जाएंगे। कोहिमा का क्राउन जूल, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी बताया था, मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल है। स्टेंड ग्लास की खूबसूरती, जापानीज फंडेड स्टोरी ऑफ रिकंसिलिएशन, आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत कि बस आंखें चकित रह जाएं और दिल भर आए खुशियों से। खुशी मतलब भाव विभोर हो जाते हैं जब हम ऐसी प्लेसेस को देखते हैं। ऐसा लगता है कि इन नज़ारों को हमेशा हमेशा के लिए आंखों में कैद कर लें। तो कैमरा आप ज़रूर ले जाएं, फोटोग्राफी ज़रूर करें, लेकिन आंखों से जी भर के इन नज़ारों को देखें, निहारें, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये दिलो दिमाग में कैप्चर हो जाए ये सारा का सारा सीन। कोहिमा का सबसे बड़ा जादू ये है कि आपको हर मोमेंट ग्रैटिट्यूड फील करवाता है। मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा वहाँ जा कर के, आप ग्रेटफुल हो जाएंगे प्रकृति को देख करके, और हैरान भी रह जाएंगे कि प्रकृति वाकई कितनी ज़्यादा सुंदर है और यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दे रखा है जिसे सहेज कर संजो कर रखना है। वैसे आज वर्ल्ड नेचर कॉन्जर्वेशन डे भी है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये दिन फोकस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को हम बना करके रखें, ताकि खुद तो हम खुश रहें, आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ करके जाएं। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि पानी को बचाना शुरू कीजिए, स्नान करते समय या ब्रश करते समय नल को बंद रखिए, शावर की बजाय अगर बाल्टी और मग का इस्तेमाल किया जाए तो पानी की बचत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, इससे मिट्टी का कटाव जो है वो रुकेगा और बारिश अच्छी होगी। साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं, जो कई बार जंगलों से निकल के हमारे घरों तक चले आते हैं, उन बेचारों को शेल्टर मिलेगा। कचरा कम कीजिए, लिटरिंग जो है, और रिसाइकिलिंग का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिनिमलिज्म भी अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, कि कम चीज़ों में हम किस तरह से गुजारा कर सकते हैं। कम चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आप अभावग्रस्त महसूस करें, उन्हीं चीज़ों का

कंजर्वेशन डे है आज, ये हमें यही सीख दे रहा है कि कुदरत को, प्रकृति को, नेचर को बचा करके चलिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी हमारा आभार व्यक्त करें, हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें। आइए एक और अच्छा सा गाना सुनाती हूँ आपको इसी बात पर, किशोरदा और लता जी का डुएट वंस अगेन, पंचमदा का म्यूज़िक, फिल्म का नाम घर, गाना खुद सुनिए।

आप सुन रहे थे ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी विद मी अनामिका। जाते जाते एक पते की बात है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुन लीजिए कि कल धूप से परेशान आज तकलीफ बारिश से, कल धूप से परेशान आज तकलीफ बारिश से, शिकायत बेशुमार है इंसान की आदत में। तो हमें शिकायत कम करके ग्रैटिट्यूड रखना सीखना होगा, तभी ज़िंदगी में हम आगे भी बढ़ते जाएंगे। वरना ये क्या हर बात में क्रिप करना, अरे कितनी तेज़ धूप है, अरे कितनी तेज़ बारिश हो रही है। प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा, उस नियम के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। और समय का नियम है कि मुझे यहाँ से अब जाना पड़ेगा। 11

56 हो गए हैं, और अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा रखिए वैसे, और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अनामिका को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए जयपुर के दिल की धड़कन, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम FM रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शैला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

0: खिलाड़ी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत अलका याग्निक की आवाजों में। अनवर सागर ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत, फिल्म दिल से।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

कुमार सानू की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाने तथा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विरोध के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर आयोजित युवाओं के साथ संवाद सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा

0: देश और प्रदेश का भविष्य है तथा उनके आगे बढ़ने से राज्य का विकास होगा। उन्होंने युवाओं से सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के अवसरों को भी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले प्रदेश और जिला स्तर पर कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में नीट परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने वाले राजस्थान के छात्र उपलक्ष्य गोयल ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों पर कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित प्रदेश भर के युवा मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में अब 59% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रदेश के 1,07,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों में से लगभग 63,00,000 परिवारों तक नल से जलापूर्ति हो रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश भर में जल जीवन मिशन के तहत अब 15,89,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जबकि मिशन शुरू होने के समय ये संख्या केवल 3,23,00,000 थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश आबू रोड और राशमी में दर्ज की गई। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, हिंडौन, माउंट आबू, गंगरार, देवदर और रूपबास में 5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पशुपालन विभाग ने बारिश के मौसम के दौरान गौशालाओं में मौसमी बीमारी और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सवाईमाधोपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने गौशाला संचालकों से जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौवंश का समय पर टीकाकरण करने और पशुओं को खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ने को कहा है। उन्होंने संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने और गौशालाओं में आने वाले नए गौवंश को निर्धारित अवधि तक क्वारंटीन में रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोटा संभाग के सरकारी और निजी विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे पर विद्यार्थियों को अंगदान, नेत्रदान, देहदान और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस पहल के साथ कोटा ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संभाग बन गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के विद्यालयों में ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। श्रोताओं, आइए आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से, जहां आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया, महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफ़र की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूं, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है, और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है, और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद

में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है इस संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफर में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून जरूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं और कोरे कागज पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफ़ी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं, और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं, और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है? तो उन वादों की बातें करते हैं। लिखिए मुझे संदेशों पर और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहाँ उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत ज़ोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां, मैं लिखी हुई दास्तां हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। मैं वो गुजरे ज़माने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटरा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज़ में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद भी लीजिए और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं। साथ ही जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं, वो हमें बताइए, हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है। बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी ज़रूर पूरा करूंगा। सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किया है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और रख रहे हैं बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूँ इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ। बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक, बहुत बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से। ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूंगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी खास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द भी लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा क्या पता। जी हां, सतर्क तो ज़रूर रहना चाहिए लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है कभी धूप भी आ रही है और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफ़ी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत, सफ़र में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ, आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तब भी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है, अपनों के लिए यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफर के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफर का जो गीत हैं उनके उनका मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफ़र का मज़ा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफ़र में जो है इंटरनेट महाराज आँख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादलों ने

अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
3: 9772097720।
4: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: आंखों का इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल।
1: कारवां फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज, और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफ़र की वादा से और अब ख़त्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा गीत के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम त्रिवेणी में स्वागत है। आज है प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रकृति हमारे जीवन का आधार। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, सब कुछ उस प्रकृति की देन है। फिर भी विडंबना यह है कि विकास की दौड़ में हम उसी प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रकृति संरक्षण का अर्थ केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जल, वन, वन्य जीव, मिट्टी और जैव विविधता सहित संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है।

कुछ तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% खारा है, केवल 3% मीठा जल है। इसमें से भी अधिकांश बर्फ के रूप में जमा है। मानव उपयोग के लिए जल 1% से भी कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और उसी खतरे का सामना कर रही हैं। एक स्वस्थ और परिपक्व पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और अपने जीवन काल में 1 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकता है। और एक तथ्य सामने आता है कि भारत विश्व के लगभग 2.4% भूभाग पर स्थित है, लेकिन यहाँ विश्व की लगभग 8% जैव विविधता पाई जाती है। यह हमारे देश की प्राकृतिक समृद्धि का प्रमाण है। हमारे पास इतना कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है और प्रकृति रह रहकर हमें संकेत दे रही है। गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है, सूखा है, बाढ़ है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वायु प्रदूषण है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान विश्व के अनेक क्षेत्रों में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किए गए और 2026 की स्थिति हम सभी जानते हैं और यह सभी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाते हैं और इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। लेकिन क्या केवल समस्याएं हैं? नहीं, इनका समाधान भी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी प्रकृति को अभी भी संरक्षित कर सकते हैं।

प्रकृति को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाना है, उसकी देखभाल भी करना है। वर्षा जल संचयन को भी हमें अपनाना है, यानी बारिश का जो पानी आ रहा है उसे सुरक्षित करना है। उसके लिए एक तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कपड़े और जूट के थैलों का प्रयोग करें, तो भी बहुत सहयोग हम कर सकते हैं। बिजली और पानी अगर हम बचा लें, अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करें, तो भी हमारा सहयोग अथक होगा। कचरे को अलग अलग जगह पर जमा करके अगर उसकी रिसाइकलिंग कर दें, तो प्रकृति मुस्कुराने लगेगी। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। तो अगर हम हमारे लालच को बचा लें, जागरूक हो जाएं, जिम्मेदारी निभाएं, प्रकृति के लिए संवेदनशील बने, प्रकृति अगर सुरक्षित है तो भविष्य सुरक्षित है।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
3: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
4: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
5: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
6: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी

0: के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
2: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
3: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिल

0: निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: एक नई खुशी।
1: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा, रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला अच्छा सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: हम देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी, नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो, हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई इस पर भी बड़ा अच्छा सा मजेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताजा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए हमें।
1: और
2: साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी CEO भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
2: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताजुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस A, B, C, D और E हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों के नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें, और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जाँच अवश्य करवाएं।
2: ये तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
2: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस लीवर की सूजन जिसको कहते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जाँच और टीकाकरण कराना और बहुत ज़रूरी है।
1: ये सब बातें बता रहे हैं। तो आरती कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा लें। और चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा मौसम
2: गीत सुन लेते हैं।
1: गीत की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के दो सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सकें। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा, और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामाई की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मालिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित, उनको AI कहती हैं वो।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का,
1: जी।
0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं,
1: जी हाँ,
0: तो उसके
1: पहले
0: बारे
1: एक
0: में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

0: तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं। और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में, तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक निरामयी को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या
1: बिल्कुल,
0: नहीं है।
1: बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से जो नवाचार वही जो इन्वेंशन किया जो उसका उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफ़ेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं।
0: बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यही कि हम महिलाएं जो हैं वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो कहना चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। और मंजरी जी, मैं तो कहूँगी हमेशा आप रेगुलर थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती देखो, हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो कल्पना करो क्या होगा, है ना,
5: इंसान तो नहीं रह सकता,
4: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है, कहते हैं ना पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
5: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हा जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
5: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
4: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना, ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
5: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम है और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीजें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना।
4: बिल्कुल।
5: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी
4: बिल्कुल। है। बिल्कुल। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीज़ें बचेंगी, सलामत रहेंगी। और
5: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का।
4: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते हैं, पौधे बीजों का रोपण कर सकते हैं, जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा,
5: जो बहुत खुशी मिलती है,
4: बहुत खुशी मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार कराएगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीज़ें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो वहाँ पर वहाँ की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर चले गए चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं, तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम बताओ?
5: सूख जाएगा वो जो हमने लगाया है, बीच पता भी नहीं कहाँ अंदर वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियाँ हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
4: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
5: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
4: बिल्कुल। और भाई बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
5: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो एक मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
4: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के बाद।
6: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: भाई मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं आरती
1: उनको देख
0: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश
1: देख
0: हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं, तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो हम
0: बिल्कुल
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज़ बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, है ना, कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल, हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती है। तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज, आपने लिखा है उनके बारे में बताया तो इस वजह पे।
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब। मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर, तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी, शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत, बस। लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते, लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई। हाँ, प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई, बचपन में छोटी छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे। वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
0: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई। इस पर इतना ही कहूँगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं, वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज़्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हों या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर, और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी। कितनी
1: एक और
0: सुन
1: हमारे साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता, तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो
0: है ना।
1: है।
0: तो एक लिखती है कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल ख़त्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो, ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ खेल भी है भाई बहन
0: बिल्कुल
1: की। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है, लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मज़ेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी, एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे, तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहाँ लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ उससे कमजोर हूँ। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूँ।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत जोर की भूख लग जाए, तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल। और ये अक्सर ये चीज़ें हो ही जाती हैं ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल।

0: कुछ खाना खाने को दे दे मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। परंतु धर्मपत्नी जी मस्त कंबल डालकर एसी कोच में सो रही हैं, और आप ही मेरी पत्नी धर्मपत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाएं। तो
1: नहीं,
0: बिल्कुल प्लीज कालकन को खाना दीजिए कृपया।
1: बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए।
0: बिल्कुल
1: और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना। हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई। मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ। चूहे, और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
0: और जो एक और मैं श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है। भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं, और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
1: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं।
1: और
0: और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज़्यादा थी, अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
1: खूब गाली पड़ी।
0: अच्छा,
1: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है, सेफ्टी फॉर द फैमिली। पेंशन वाली नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी,
0: उनकी पहली संतान, यानी आप लोगों की सबसे बड़ी बहन।
1: बड़ी बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है, तो बंसी वाले का इशारा होगा, मैं तब जाऊंगा।
0: ये इशारा कब हुआ?
1: ये इशारा हुआ 15 मई 1956, व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं।
0: वाह वाह,
1: मतलब एक जो लड़की आती है ना घर में,
0: पिताजी के लिए नसीब लाती,
1: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है, दुर्गा इज द फाइनल पावर।
0: ये
1: उनको याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
0: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
1: फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
0: गजब।
1: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
0: सबसे बड़ी बेटी।
1: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों, क्यों वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है। तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
0: कमाल की बात कही है।
1: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
0: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
1: 13 साल 14 साल।
0: जी जी।
1: तो तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
0: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
1: आप जिसको डिनाय करोगे ना उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
0: बंबई में क्या हुआ जब वो यहाँ आए, कहाँ रहे? और वो
1: अलग अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
0: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
1: हाँ, वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले, उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
0: हाँ।
1: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है?
0: जी जी,
1: तो हमने छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू इसको पूरा करेगा।
0: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मांगा नहीं है, आप सोचो पूरी दुनिया मांग रही है। अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है, तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
0: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां लिखी।
1: बड़ा नटखट है तू
0: कृष्ण कन्हैया, क्या बात है। ये गाना भी बख्शी साहब का।
1: सर वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
0: हाँ,
1: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना।
0: वाह,
1: लाइन है यार, आप सोचो।
0: वाह वाह,
1: क्या क्या नहीं चाहते लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका आज मेरा होता।
0: क्या
1: इससे बड़ी दुआ है क्या दुनिया में?
0: नहीं, हा? नहीं। क्या गजब का ख्याल है।
1: वो गाने में कहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना। यार तो मेरे जैसा है, अपना जैसा है यार।
0: वाह वाह वाह वाह।

जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: Bakshi Saab ko, my senior, he was my senior in my job. I was an assistant director. He was the chief assistant director, Shakir Khan. Shakir Khan ne Bakshi Saab ka interview liya Subhash Ji ke liye. Question Subhash Ji ne pucha tha Bakshi Saab ko, ke Bakshi Ji, aapko kab lagta ki aap fail ho gaye ho as a writer? He said, mujhe jabhi bhi mujhe koi bolta hai na ke ye gana maine suna, mujhe laga ye Bakshi Saab ne likha hai, mujhe laga main fail ho gaya hu.
1: Gazab.
0: Kyunki as a lyricist, my voice has to be hidden. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं, तो ये वो मेरा फेलियर है,
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. Given and told the producer, director को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से. फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर. That character is uneducated, she cannot speak such high literature words. Producer को बोला है, सर लिसन टू हिम, he's talking sense. तो वो सब इंग्लिश में बात करते थे, साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: He wants to remove the song, he is the writer of the film. Why you want to remove the song? He thinks these are not my words. These are my words, they are not the words of the character. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं. मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: या
1: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्श साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला, बख्श साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे, रविंद्र टैगोर की फोटो
0: जी
1: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
0: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
1: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
0: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
1: अरे कमाल है वो तो,
0: वो कहानी बताइए।
1: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकेंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को, बोला टिकट दिखाओ, बोला टिकट नहीं है, फाइन भरो, तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है, बोला भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है, कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के, मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ, बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो, वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, हर गाना मालूम था, आप देखो क्या चमत्कार, ईश्वर का, अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो, बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो, काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है, सुनाओ, सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ, और सुनाया, 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी साहब की। बोले तुम वापस मत जाओ, तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में, तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है, मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे
0: बोरीवली में,
1: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
0: तो
1: जिंदगी भर मरते तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से।
0: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए, अब एक आसरा हो गया, यहाँ से स्ट्रगल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
1: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे देते, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया, वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को, बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे, यू अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम, रोशन
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। बोले साहब आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर, तो वहाँ चले गए और ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया, इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊँ तो कितने घंटे लगेंगे, तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम, पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए, बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
0: पागल हो गया,
1: बरसात में क्यों आए तुम, इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए आप मेरा गाना सुनेंगे, इसे हाँ लेकिन इतना जरूरी नहीं था।
0: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या,
1: हाँ तुम पागल हो क्या तुम, इसे सर आपके लिए जरूरी नहीं था, मेरे लिए जरूरी था।
0: क्या बात
1: है, एकदम चौंक गया वो आदमी, उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ, उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
0: वाह वाह वाह वाह, यहां से शुरू होता है
1: कि गाने क्यों जरूरी हैं।
0: जी
1: ये जो किस्सा है क्यों जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता। हमारी इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
0: सोचिए कि शकील के नगमे थे, तो उसमें बख्शी साहब को बीच में मौका मिला।
1: राजेश रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज़ हैं, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
0: वाह वाह।
1: और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ दो तीन हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखना भूल गए, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन।
0: कितनी
1: इतना बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए, कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
0: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का।
1: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर
0: जी।

0: तो ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: एटोलिनो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजित स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पैदल जाओ सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया ना, निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा के रूम में चले गए। कौन है भाई तुम, क्या कर रहा है इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो, बताओ सुना कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, गाने सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, उसको बहुत पसंद आया। बोला अरे वाह, तो बाकी के 3 गाने लिखो, इसी से लिख के लाया।
1: अरे कैसे लाया,
0: तीनों का 4 गाने लिख के लाया। अच्छा 4 गाने लिख दिए तुमने
1: जी?
0: हाँ सुनाओ, सुनो रिकॉर्डिंग होगी उसकी।
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आया ना तो नदी को बाहर ही निकलने देंगे, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता, उनको चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली,
0: पहली हिट थी
1: जी,
0: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा, उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: 1-2 गाने थे हिमालय की गोद में।
0: हाँ लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
0: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: था।
1: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
2: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
1: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
2: जी,
1: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे। मेरे

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस और गाने लिख रहे हैं,
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के,
0: जमीन पे बैठ के, कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो, तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तो इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख
0: रहा हूँ। कुकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माय प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है और मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ़ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा लेकिन बाकी उनसे ज़्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे।
0: हाँ,
1: मेहनत बहुत।
0: तुमने 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3, 4, 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब हम इसमें से चुन लो, जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहर ही है, इसको बहने दो, रुको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर्ड के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाया गया है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफ़ी बार फ़ोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे और ये लोग जाते थे बर्ली सी फेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सी फेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे,
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव फॉर हन बख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, तो सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूँ मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: ही सेड मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। आई एम ग्लैड दैट माई पार्टनर्स इन द सॉन्ग्स आर यू टू बोथ, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको, समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू LP, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी ज़रूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।
2: मुबारक हो सबको, समाए सुहाना।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपये का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम? किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ, बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो यू अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं यू अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं। तो इज टू रबिश इट, यू नो, कि नहीं नहीं क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्या मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया, खत्म हो जाऊंगा। उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती। चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, RDP पे डाल दो, LP पे डाल दो, राजेश खन्ना पे डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो। डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, वो रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था। तो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है।
1: वाह
0: बख्शी, बस जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब हो गया है।
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: पक्षी साहब, जो सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहाँ का टॉप जॉकी है, तो आप यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र ने बोला, देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनको तो उर्दू वाज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो, जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

पर बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी।
2: चलो शुक्रिया, थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
1: 9772097720।
2: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

0: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
3: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सलामे इश्क फिल्म के गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने, गीतकार समीर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

साजन का घर, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें साधना सरगम और कुमार सानू की, तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
5: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
4: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
6: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
4: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
7: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
4: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: इस समय आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिल्म का नाम फरार।
9: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: अब सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले को फिल्म सागर में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरटी बर्मन ने।

कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, जिसे आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथी। फिल्म का नाम प्रेम नगर।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
5: मुकेश के गानों में है सादगी।
6: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
5: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
6: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
5: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
6: जाऊं कहां बताए दिल।
5: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
7: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
5: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नाराज ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाज कुमार सानू की, गीत कतील शफाई का और संगीत अनु मलिक का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
6: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
5: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
7: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
5: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
8: तुम्हारी याद सताती है।
5: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में अब सुनिए समीर का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की फिल्म का नाम वंश।

100.3 MHz पर आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम हम विविध भारती जयपुर से बोल रहे हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अब आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। इस दौरान आप सुनेंगे थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के आसार, कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई अंतरिम निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें 200 से अधिक घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती भी शामिल है। साथ ही ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक इस बात की पुष्टि करता है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा नहीं रखने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आउटसोर्सिंग के जरिए अधिकारियों की भर्ती पर भी सवाल उठाए। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए बाल परिसर समर्पित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 साल में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने वाली कई पहल की गई है। इससे औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने और जड़ों की ओर लौटने में मदद मिली है।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। श्री शर्मा आज धौलपुर पहुंचे। उन्होंने फूलपुर में स्टेडियम में

0: आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।
1: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
0: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 177 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये काम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीग के पुंछरी का लोठा पहुंचे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री शर्मा कल भरतपुर के खेडली गुर्जर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए राशि डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का भी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले श्री शर्मा ने जयपुर में आज अपने निवास पर युवाओं के साथ संवाद किया। सपनों की उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। वहीं एट होम कार्यक्रम जयपुर में होगा। इससे जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आज जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बीकानेर जिला प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। बैठक में समारोह को गरिमापूर्ण, भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर निशांत जैन भी वीसी के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच अकादमिक सहयोग के लिए एमओयू किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से डॉ विमल कुमार शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस मौके पर डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि इससे पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान के पुलिसकर्मियों को डिस्टेंस लर्निंग और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स के अवसर मिल सकेंगे। इससे पीएचडी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पुलिस बल का क्षमता संवर्धन, तनाव प्रबंधन और पेशेवर दक्षता मजबूत होगी। प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने और अधिकतर हिस्सों में बरसात की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्से भारी बारिश से तर बतर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में दोपहर में पानी बरसा। सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस के बाद आज चूरू भी अच्छी बरसात से सराबोर रहा। टोंक में हुई झमाझम बारिश से कई जगह पानी भर गया। भरतपुर में दिन भर कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हुई। उधर सिरोही में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चला। आबूराज में पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। और अब लिवर के नाम एक जरूरी संदेश। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस की पहचान, इलाज और रोकथाम के उपायों को लोगों तक पहुंचाना है। इस साल की थीम इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाए रखी गई हैं। साथ ही वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल के उदर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर महर्षि ने बताया कि हेपेटाइटिस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है।
2: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। दैट इज बी सी और डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और जब भी इस तरह के लक्षण आए, इनके लक्षण कॉमन लक्षण होते हैं जैसे पीलिया होना या बुखार होना या पेट में दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी का मन करना, इस तरह के लक्षण जैसे भी आते हैं तो अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से तुरंत दिखा के उसका उचित इलाज करें। धन्यवाद।
0: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गुरुओं के आदर सम्मान को समर्पित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने के आसार। कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है लक्ष्मी चंद नागर ने। हाड़ौती अंचल के 12 जिले में पिछले महीने विकास, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां रहीं। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ युवाओं, किसानों और आमजन के हित में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 जिले से की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करते हुए युवाओं से कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत माय भारत केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा समाज में जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 12 नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आमजन को मिल रही सेवाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत श्रीराम स्टेडियम और खेल संकुल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 300 से अधिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इन विकास कार्यों से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिले के कोयला गांव की यशोधरा हाड़ा और एंजल हाड़ा ने राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को नई प्रेरणा मिली है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण अभियान में 12 जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक ही दिन में 247 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक निर्धारित लक्ष्य का 36% से अधिक पूरा किया जा चुका है। महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इसमें लगभग 3000 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन नंबरों तथा आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा के व्यवहारिक प्रदर्शन भी किए और विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने के तरीके बताए। राज्य सरकार ने सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे धनिया सहित उद्यानिकी फसलों के किसानों को फसल सुरक्षित ढंग से सुखाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक से किसानों की लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की भी संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ जिले में भी किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जिले में 1,70,658 किसानों के खातों में 34,13,00,000 रुपए की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंता के कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों ने योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती के लिए उपयोगी बताया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट 18 साल नो कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शन करण वाला विद्यार्थियों ने तुरंत रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी, बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण मा थे खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए, मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश में आए 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखा रा आसार, काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करण वाला 18 साल कम उम्र और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला विद्यार्थियों ने आज रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में लाडला दिना आखा देश में भ्या प्रदर्शनों जुड़िया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत हिफाजत सागे राखण राई हुकम दीना। अदालत आ प्रदर्शन रे दौरान पुलिस कानियों जोर आजमाइश रा आरोपों जुड़ी अर्जियां री सुनवाई करता थका कई अंतरिम निर्देश दीना। पीठ कहो के शुरुआती आरोपों रा आधारों निपक्ष और स्वतंत्र जांच माथे विचार करो चाहू चैचे चिणमाए। प्रदर्शन रे दौरान जख्मी भ्या 200 पुलिस वाला रा परिवार री चिंता रोई ध्यान रखो चाहू चैचे। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 माथे चर्चा करी जा रही है। इन बिल में पेपर लीक रा दोषियों ने 10 साल ताई री कैद री सजा देवन सागे वहां माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावण एरवारी संपत्ति जब्त करण रोई प्रावधान है। ईसा गई एड़ा मामला रा बेगा निपटारा सारू हर राज्य अर केंद्र रा राज वाला प्रदेशां माए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलन रो प्रावधान है। बिल पेश करता था का कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के ओ बिल बतावे है के नौजवाना रा भविष्य सागे कोई समझौतो नहीं करियो जावेला। चर्चा रे दौरान कांग्रेस रा गौरव गोगोई सरकार माथे बनाई लिखाई रा हलका माथे ध्यान नहीं देवन और असली सुधार लावन रो इरादो नहीं राखन रो आरोप मांडियो। समाजवादी पार्टी रा सांसद अखिलेश यादव न्यारी न्यारी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवन पर चिंता जताई। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी माय आउटसोर्सिंग रे जरिए अहलकारा री भर्ती माथे सवाल उठायो। न्यारी न्यारी पार्टियां रा नुमाइंदा बिलू जुड़िया मुद्दा माथे वारी बात रख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वारा कार्यकाल रा 4 साल पूरा वेवन रे मौके आज राष्ट्रपति भवन माय न्यारी न्यारी परियोजना वारी शुरुआत कीनी। वे राष्ट्रपति भवन माय बच्चा सारू बाल परिसर समर्पित कीनो। इस दौरान राष्ट्रपति बच्चा सागे बातचीत कीनी। वे वर्चुअल तरीकाओं किलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन रोई उद्घाटन कीनो। इस मौके श्रीमती मुर्मू देश रा विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण रे बारा माय चर्चा कीनी। राष्ट्रपति कहो कि लारला 4 साल माय राष्ट्रीय भावना ने मजबूत करण वाली कई पहल करी जी जिणु गुलामी री सोच आगी करण और जड़ाऊ जुड़बा माय मदद मिली है।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
5: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान दे रही है। वे आज धौलपुर के न फूलपुर रा स्टेडियम माय राखी जी जनसभा माय बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि सरकार सबका साथ सबका विकास री सोच सागे हर तबका रा भला सारू काम कर रही है।
1: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठाबाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
5: इन पाछे मुख्यमंत्री डीग जिला रा पूंछरी का लौठा माय राख्या जावन वाला कार्यक्रम माय शिरकत करण सारू रवाना भया। श्री शर्मा रो भरतपुर जिला रा खेड़ली गुजर माय गुरु पूर्णिमा रे मौके राज्य स्तर रा कार्यक्रम माय शामिल वे वन रोई कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों रा खाता माय स्कूल ड्रेस सरू रकम ही भेजेला। मारो मिशन पढ़ो राजस्थान रातेत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत रोई कार्यक्रम है। इनु पहली श्री शर्मा जयपुर माय आज मारा रहवास माथे नौजवाना सागे बातचीत कीनी। सपनों की उड़ान कार्यक्रम माय मुख्यमंत्री शिक्षा खेल स्टार्टअप माय भारत वॉलेंटियर सर प्रतियोगी परीक्षा मारी तैयारी कर रहा नौजवानों बातचीत कीनी। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके 15 अगस्त ने राज्य स्तर रो जलसो इन दफा बीकानेर माय राख्यो जावेला। इनु पहली री संजा बीकानेर माय सांस्कृतिक कार्यक्रम ही फैला। राजधानी जयपुर माय एट होम कार्यक्रम राख्यो जावेला। इनु जुड़ी तैयारियां और व्यवस्थाओं रो जायजो लेवण सारू मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माय संबंधित महकमा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे बीकानेर जिला प्रशासन सागे तालमेल राखर टेम सर तैयारियां पूरी करण बाबत कहो। राजस्थान पुलिस अकादमी RPA और यूकेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बीच अकादमिक सहयोग सारू करार करी चियो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री मौजूदगी में आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में राखी जा जलसा में ई करार माथे सही करी ची।

0: अगस्त ताई चौमासा रे चोखे बिरखारा आसार है। मौसम विभाग काल 29 जिला माए बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इस दौरान कठे कठे जोरदार बायरो बाजन राई आसार है। जोधपुर संभाग रे अलावा दूजी सगली ठोणा मझलाऊ तेज दर्जा री बरसात री संभावना है। इन बीच आज राजधानी जयपुर रा न्यारा न्यारा हल्का माए दोपहर पाछे पानी बरसियो। सवाई माधोपुर जिला और आरएसआरआर रा हल्का माए हल्की मझला दर्जा री बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस पाछे आज चूरू माए चोखो मेह बरसियो। टोंक माए झमाझम मेह बरसियो। भरतपुर माए आखा दिन बिरखा फी। तुजिकानी सिरोही माए आखा दिन रिमझिम बारिश हुई। आबूराज माए डूंगरिया माथे धुंध छाई रही और मौसम सुहावनो बनियो रहो। दूजिकानी हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा माए उमस और गर्मियों लोग परेशान रहा। राज्य माए चलाया जा रहा ग्रामीण और शहरी सेवा फॉलोअप शिविरा माए जनता री समस्यावां मौके दूर करी जा रही है। जालौर जिला री 7 ग्राम पंचायत माए लगाई जा शिविरा माए एक ही छत हेट राजस्व पंचायती राज सामाजिक न्याय अधिकारिता चिकित्सा और स्वास्थ्य समेत न्यारा न्यारा महकमाओं जुड़िया काम कराया जा रहा है। काल नून थावला रेवतड़ा सेरना वणधर आकोली और दांता ग्राम पंचायत माए ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर लगाया जावेला। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। ओ दिन मनावन रो मकसद हेपेटाइटिस रे पिछाण इलाज और रोकथाम रा उपायां री जानकारी जनता ताई पुगावनो है। एनरो इन साल रो मुद्दो इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाएं राखी चियो है। पेट री बीमारियां रा जानकार डॉक्टर सुधीर महर्षि बतायो कि हेपेटाइटिस री बीमारी रे कारण लीवर माए सूजन आ जावे है। डॉक्टर महर्षि बतायो कि टेम सर इलाज नी भेवन री सूरत माए मरीज री हालत बिगड़ सके है।
1: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। दैट इज बी सी ओ डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं इन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और
0: विश्व हेपेटाइटिस दिवस रे मौके प्रदेश में आई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। बाड़मेर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जनता और स्वास्थ्य कर्मचारियों में हेपेटाइटिस रे प्रति जाग जगावन सारो खास कार्यक्रम फियो। जयपुर नगर निगम री ओरू एक अनोखी पहल करी ची है। इन्हें तेज सावन में मिंद्राऊ बील रा पत्ता और फूल भिड़ा कर जैविक खाद बनाई जावेला। और ब्यूरो माणा खबर नवीसू।
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: आखिर में खास समाचार एक बार फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट 18 सालों कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने तुरंत रिहा करण रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर माए राख्यो जावेला। मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश माए 2 अगस्त ताई चौमासारी चोखी बिरखारा आसार। काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: धड़कन कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।

0: देशवासी, अभी आपने इस फिल्म में नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खैर का था। लीजिए सुनिए उदित नारायण और प्रीति उत्तम को फिल्म गदर में। उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है।
2: बिकॉज एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, फिल्म है चांदनी, संगीत शिवहरी का, आवाजें लता मंगेशकर और बाबला की।

0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म मिशन कश्मीर में। बोल लिखे हैं राहत इंदौरी ने, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: फौजी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू को फिल्म दुश्मन में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

अब सुनिए आकाशदीप सेन गुप्ता के स्वर में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत। इसे लिखा है आलोक रंजन श्रीवास्तव ने।

लीजिए सुनिए सत्यदेव बर्मन के संगीत निर्देशन में सौमिक सेन का लिखा गीत, आवाजें सुनीति चौहान, किड्स स्नेहा सुरेश और श्रवण सुरेश की।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं वीएम आनंद की लिखी नाटिका बस की सीट।
1: भाई साहब जरा संभल के बस में खड़े होइए, ये आपका घर थोड़ा ही, सीधे से खड़े होइए।
2: भाई साहब मेरे पैर पे पैर मत मारिए।
1: ओह ये बैग संभालिए ना अपना। भाई साहब आप बैग तो मेरे ऊपर फेंक रहे हैं।
2: भाई साहब मेरे सिर पे किक क्या रख दिया आपने, इधर कीजिए।
1: आगे चलिए, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं?
2: ओह
1: माता, ये पीछे क्यों नहीं होती है?

0: नहीं खड़ा।
1: हाँ ये खिड़की के पास में।
0: हाँ ठीक है।
2: ओहो कितना रश हो रहा है इस बस में, धक्के पर धक्के लग रहे हैं, दम घुटा जा रहा है यार।
1: हाँ यार दीपक, लगता है इस बस में तो हम दोनों का कचूमर ही निकल जाएगा, हे भगवान।
2: लेकिन प्रकाश तुम तो यार आए दिन कहते हो कि बस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, सीट तो मुझे मिल ही जाती है।
1: अरे यार ये तो मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में सीट हासिल कर लूँ।
2: तो ठीक है, आज हम भी देखें कि तुम बस में सीट कैसे लेते हो, लोगों से वाकफियत कैसे काटते हो। देखे
1: ए दीपक, देख मुझे तू जोश मत दिला, हाँ वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई सीट ले ही लूंगा और विकासपुरी तक बैठ कर ही जाऊंगा।
2: ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा हा? तो देख क्या रहे हो, किसी सीट पर बैठ कर दिखाओ तो जाने।
1: तो ठीक है, लगी शर्त?
2: लग गई।
1: डन
2: डन।
1: तो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहो और जब मुझे वहाँ सीट मिल जाएगी मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा, फिर आकर देख लेना अपनी आंखों से। अब मैं चला भाई साहब, सर आगे जाने के लिए गफा तो दीजिए। अब मैं थोड़ा सा रास्ता बोलिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आगे जाने के लिए।
3: कोने की सीट पर बैठा है, लगता है यही काम का मुर्गा है। तो चल प्रकाश प्यारे, आज इसी पे हाथ मारे।
1: भाई साहब तरह आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज प्लीज।
3: अंकल आप और यहाँ? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ अंकल, आपसे ही।
4: सीट के पीछे की तरफ खड़ा है, आपको ही आवाज दे रहा है।
5: मुझे आवाज दे रहा है?
3: हाँ अंकल, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना?
5: नहीं बेटे नहीं, भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अब बुरा नहीं मानना बेटे, अब क्या करूँ, बुढ़ापा छा गया है, नजर कमजोर हो गई है, मैं अब जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाता।
3: लेकिन अंकल मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था, आप शायद वहीं पर रहते हैं ना? वहीं पे
5: वहीं है। मैं विकासपुरी में ही तो रहता हूँ।
3: जी हाँ विकासपुरी में, विकासपुरी में। और अंकल आप शायद उसी ब्लॉक में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं।
5: यानी कि तुम भी जी ब्लॉक में ही रहते हो?
1: बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने, बिल्कुल ठीक कहा, हम भी जी ब्लॉक में ही रहते हैं।
5: अरे वाह वाह वाह वाह, फिर तो तुमने मुझे खूब पहचाना भाई। तुम्हें ये भी पता है कि मैं विकासपुरी में रहता हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ। बहुत अच्छे बरखुदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
6: कुछ मुझे भी याद आ रहा है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा जरूर है।
3: याद कीजिए अंकल, जरा ध्यान से याद कीजिए।
6: अरे कहीं तुम उसके बेटे?
3: हाँ अंकल, मैं उन्हीं का ही तो बेटा हूँ, उन्हीं का।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, ओ नारायण दास का।
1: अब पहचाना आपने?
6: और तुम्हारे फ्लैट का नंबर भी?
3: अंकल फ्लैट नंबर 128 ग्राउंड फ्लोर वाला।
5: ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर भाई। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ बेटे।
4: पापा आप क्यों इस लड़के से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, ना जाने ये विकासपुरी में रहता भी है या नहीं, ना जाने कौन है कैसा है।
6: अरे बेटी मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा क्या जाता है, है? ही कोई भी हो लेकिन लड़का अच्छा लग रहा है।
3: अंकल आप मुझसे कुछ कह रहे थे?
5: भाई मैं कह रहा था कि खड़े क्यों हो बेटे, बैठ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ यहाँ, हम तीनों ही सीट पर एडजस्ट हो जाएंगे।
1: नहीं अंकल मैं आपके साथ भला कैसे बैठ सकता हूँ, अब आप दोनों आराम से बैठे हुए हैं, अब बैठे रहिए, अब दो की सीट पर भला हम तीनों कैसे बैठ सकते हैं। नहीं नहीं आपको भी परेशानी अंकल, आप बैठे रहिए।
6: बेटे इसमें परेशानी की कौन सी बात है?
5: अरे तुम कोई पराये तोड़ रही हो, अपने नारायण दास के ही तो बेटे हो।
4: ओ पापा आप क्यों उसके पीछे पड़ गए, खड़े रहने दीजिए उसे, कहाँ बैठेगा वो, हमारी सीट पर?
6: अरे तुम चुप रहो।
5: हाँ तो बेटे बैठ जाओ ना। हाँ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे बेटे तुम जरा उधर सरक जाओ ना, सरको सरको।
1: अब आप इतना कह रहे हैं तो मुझे बैठना ही पड़ेगा।
5: बैठो बैठो।
1: थैंक यू अंकल।
6: बेटा ये है मेरी बेटी रश्मि, इसे तो तुमने पहले देखा ही होगा। अरे हम भी तुम्हारे ब्लॉक में ही रहते हैं भाई।
3: जी इन्हें? नहीं तो मैंने तो इन्हें वहां कभी नहीं देखा।
6: हाय भाई वाह वाह वाह वाह वाह। अरे ये है शरीफ।

0: लड़के की पहचान है, खानदानी लड़के की पहचान। मजाल है जो नजरें उठाकर किसी लड़की की तरफ देखा जाए। वाह वाह
1: जी
0: भाई, कमाल है। यानी इतने सालों से हम भी वहीं रह रहे हैं, तुम भी वहीं रह रहे हो, हमारी बेटी को आज तक तुमने देखा ही नहीं। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो?
1: जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ।
0: हाँ हाँ, बैंक में मुझे याद आ गया। भाई नारायण दास भी कितनी किस्मत वाला है, एक तो लड़का इतना शरीफ और फिर बैंक में नौकरी करता, यानी कि सोने पर सुहागा।
1: अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भला मैं आप लोगों के सामने हुई क्या?
0: वाह वाह, अरे ये तो तुम्हारा और भी बड़प्पन है बेटे। इतना कुछ होते हुए भी कह रहे हो कि तुम हमारे सामने क्या हो। वाह वाह भाई, मैं कहता हूँ धन्य है नारायण दास जिसके घर तुमने जन्म लिया।
2: अरे प्रकाश।
1: हाँ भाई, क्या बात है दीपक?
2: अरे सीट मिल गई क्या?
1: हाँ हाँ मिल गई, लेकिन तुम अभी वहीं लटके रहो।
0: अरे ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से?
1: अंकल ये मेरा दोस्त है, दरअसल उसे सीट नहीं मिली ना, इसीलिए पूछ रहा था कि यहाँ कोई सीट।
0: अरे उसे सीट मिलेगी भी कैसे भाई, खड़ा रहने दो उसे वहाँ। बस में देखो तो क्या बुरी हालत हो रही है। हाय बेटी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानूंगी?
1: नहीं अंकल, आप कहकर तो देखिए।
0: बेटा अब तुम जवान हो गए हो, नौकरी भी कर रहे हो, भाई शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है?
1: शादी? अब अंकल वो शादी?
0: अरे तो अब सोच लो ना बेटे, अभी तो आधा घंटा बाकी है विकासपुरी आने में।
1: जी आधा घंटा?
0: हाँ, अरे आधे घंटे में तो लोग कई कई फैसले कर लेते हैं।
1: लेकिन अंकल शादी के बारे में मैं कैसे सोच?
0: अरे सोचना क्या है, कोई लड़की देखी क्या?
1: नहीं देखी?
0: अरे तो देख लो ना बेटे, लड़की देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा।
1: जी जी, जी, जी। मैं आपका मतलब नहीं समझा
0: भाई। मेरे साथ है, देखो मेरी बेटी जो बैठी है ना, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: बेटी? आपकी बेटी?
3: पापा क्या हो गया आपको, क्यों आप बीच में मेरा नाम ले रहे हैं? मैंने नहीं करनी इससे शादी, ना जाने कौन है ये।
0: अरे बेटी ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, शरीफ खानदान, पढ़ा लिखा, बैंक में नौकरी है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, देख बीच में टांग मत रख।
3: पापा आप भी अजीब बातें करते हो, अगर आप हाँ कर भी दें तो ये हाँ कैसे करेगा?
0: अरे क्यों नहीं करेगा बेटी, ये क्या इसका बाप नारायण दास भी हाँ करेगा? अरे इसे हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा?
1: जी अंकल आप भी काफी मजाकिया किस्म के आदमी हैं। भाई वाह, क्या बात निकाली है आपने अंकल।
0: अरे तुम्हें हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है।
1: अंकल आप तो नाराज हो गए। मैं ये कब कह रहा हूँ कि जो सीट आपने मुझे दी है वो कोई मजाक है? बल्कि अंकल मैं तो सारा जीवन आपका ये एहसान नहीं भूल सकता। हाँ।
2: अरे प्रकाश।
1: हाँ भाई क्या बात है?
2: अरे खुद तो सीट लेकर वहाँ पर बैठ गए हो, अब मेरा क्या होगा? अरे कोई और सीट है वहाँ?
0: अरे नहीं भैया नहीं, यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है। अरे भाई वहीं खड़े रहो वहीं। हाँ देखा देखा, अरे तुम्हारा दोस्त छचूंदर की तरह अभी तक डंडे से लटका पड़ा है और धक्के भी खा रहा है।
1: जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप मुझे सीट ना देते तो मेरी भी वही हालत होती।
0: तो बेटा तुमने जवाब मिल दिया, भाई जल्दी करो विकासपुरी आने वाली है।
1: किस बात का जवाब अंकल?
0: हेलो, अरे जो चीज अभी मैंने पूछी थी वो अभी भूल गए, तो तुम्हें ये क्या याद रहेगा कि हमने तुम्हें सीट दी थी? अरे बरफुलदार, रश्मि से शादी करोगे ना?
1: रश्मि से शादी? लेकिन अंकल
0: अच्छा, पिताजी से पूछना है। अरे पिताजी की बात छोड़ो बेटे, रश्मि के लिए नारायण दास तो कभी ना कह ही नहीं सकता। और जब उसे ये पता चलेगा कि हमने उसके बेटे को बस में सीट दी थी तो वो एकदम हाँ कह देगा।
1: वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।
0: क्या कहा? अच्छा, तुम्हें शादी

0: की कोई जल्दी नहीं है। अरे तो बस में सीट लेने की क्या जल्दी थी, उठ जाओ हमारी सीट से।
1: अरे प्रकाश प्यारे, अब क्या करेगा? अगर मैं उठता हूँ कि शर्त हार जाता हूँ, और अगर यहाँ बैठा रहता हूँ तो ये खूनसट बुड्ढा अपनी लड़की को मेरे गले से मर देगा। भगवान अब क्या करूँ?
2: वो अंकल मैं ये कह रहा था कि
0: अच्छा तुम अभी शर्मा रहे हो, ठीक है भाई, खानदानी लड़के हो, ये तुम बुजुर्गों के सामने कैसे कह दोगे?
1: जी जी
0: तो फिर मैं हाँ समझू।
1: लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुनिए अंकल, मेरी तो शादी हो चुकी है।
0: आए, शादी हो चुकी है? अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? आए, उठो उठो यहाँ से। बड़े आए सीट लेने वाले, आश खुंदे न जाने कहाँ से बस में चढ़ जाते हैं। उठिए उठिए उठिए उठिए उठिए यहाँ से।
3: क्यों बेटे, मिल गई सीट? लाओ निकालो मेरी शर्त के पैसे।
1: हाँ भाई, ये ले तेरी शर्त के 100 रुपए। ये बस की सीट तो बड़ी महंगी पड़ी यार।
4: अरे अरे रश्मि, तुम यहाँ?
5: अरे दीपक।
4: कौन दीपक?
5: दीपक ये मेरे डैडी हैं।
4: हैं? ये तुम्हारे डैडी हैं? नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो बरखुरदार?
5: पापा, ये वही तो है दीपक।
0: दीपक? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी।
5: हाँ पापा।
4: अंकल अब तो आप समझ गए ना अंकल, मैं आपसे मिलना चाह रहा था अंकल।
0: मुझसे मिलना चाहते हो? अरे किस लिए भाई?
4: अंकल अब आप खुद ही समझ जाइए ना।
0: ओ अरे मैं तो समझ ही गया हूँ भाई। आओ आओ बैठो, इधर बैठो। और भाई असल में तो ये सीट तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी बेटा।
1: मुबारक हो दीपक, मुबारक हो भाई, आज तो दो दो जगह मोर्चा मारा है।
6: तो ये थी नाटिका बस की सीट। लेखक वीएम आनंद, निर्देशन किया सुशील बनर्जी ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश न्यूयॉर्क फिल्म से, इसे गाया है मोहित चौहान ने, संगीत प्रीतम का बोल संदीप श्रीवास्तव के।

मोहित चौहान के बाद अब सुनिए सोनू निगम को फिल्म सरबजीत में। बोल लिखे हैं जानी और रश्मि विराग ने, संगीत जीत गांगुली का।

अभी आपने रुस्तम फिल्म में जुबिन नौटियाल को सुना, वो लिखे थे मनोज मुंतशिर ने, संगीत तैयार किया था जीत गांगुली ने। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे और प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
2: 9720-9720।
3: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत। प्रायोजक वीकु वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार। कल का

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर।

0: अपनी कला रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय व्यावसायिक मिश्रित वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी GDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
5: मुकेश के गानों में है सादगी।
4: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
5: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
4: कहीं करती होगी
5: सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
4: जाऊं कहां बताए दिल।
5: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
5: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
6: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मिक्की वायरस फिल्म से, इसे आवाज दे रहे हैं अरिजीत सिंह। गीत संगीत हनीफ शेख का।

हानिफ शेख के गीत संगीत निर्देशन में अभी आपने अरिजीत सिंह का गाया मिक्की वायरस फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: To ensure speedy justice.
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
5: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
6: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
7: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
7: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
8: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की पहली तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से। फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

अभी आपने लता मंगेशकर को सुना, अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत राहुल देव बर्मन का, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम बुढ़ा मिल गया।

0: अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जख्मी में सुना। गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी बप्पी लहरी ने।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की फिल्म का नाम जहरीला इंसान।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म अली बाबा 40 चोर में। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, दीजिए इजाजत। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था जैबुन्नेसा। कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

0: गगन।
1: आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया। गीत को उन्होंने किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

फिल्म जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पीर ये चढ़ैबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया,

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ।

ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर प्यार करना नहीं भूलता।

0: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियाँ, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियाँ भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियाँ हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म।

0: जलती जाए रात।
1: आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त,

0: और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: .3 MHz पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।